0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: की ताकतें कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 7:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: It's amazing how this song, I always thought that it is actually an Ali Zafar song, but no, it is actually an Arijit Singh song.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Because if somebody's on screen, then you assume that if he's a singer, then he'll be singing his own song, right? But no, aisa nahi. Arijit Singh right here. Tu hi hai. What a lovely way to start your day. If you've got more such recommendations, songs that are morning songs, yani ki sunke mood bilkul ban jaye. जैसे कहते हैं ना बन जाए अच्छा हो जाए देन सेंड मी दोज रिक्वेस्ट 0543091062 इज माय व्हाट्सएप नंबर कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल दम भरा दम गमा दम फ्रॉम पति पत्नी और वो दो कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल उदित नारायण की आवाज एंड आनंद मिलिंद क्लासिक दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड गुड मॉर्निंग

0: बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
1: फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Daniel Properties, coming soon on Big 106.2.
2: School's starting soon and we need a car.
3: Books, uniforms, everything.
2: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
2: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: InsuranceMarket.ae. The worst part of a small accident isn't the dent, it's what can happen after. But with us, you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from InsuranceMarket.ae.
7: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
8: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29 अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। Zikr brings India's master storyteller, Amandeep Khayal, with his soul-stirring show, Dhak Dhak, for the very first time in Dubai. Ehsaas, chai ki garmahat, aur dil ko chhoo lene wale kisse at GEMS Al Barsha National School. Doors open at 4:30 p.m. Show begins at 5:30 p.m. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 7:28 on the clock right now. The temperature is 34 degrees Celsius. Nice and sunny. Kal andhera tha at 5:30. Aaj bilkul ujala. It's that kind of cusp weather that you can expect. Humidity at 74%, quite high. Winds blowing at 13 kilometers per hour. Highs of 37. Lows of 34 degrees Celsius right now.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: एंड सुबह सवेरे अगर एनर्जी के मामले में मची हुई है थोड़ी सी तबाही आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में, ताकत की कमी होना और कमजोरी फील करना इज वेरी कॉमन. स्ट्रेस, फास्ट फूड एंड अ फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, दे कैन ऑल मेक यू फील लो, बट यू डोंट हैव टू वरी. हैव डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, दे हेल्प इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड पावर. शेर की तरह बने मजबूत, हर दिन की शुरुआत करें विद डाबर शिलाजीत. मिटाए कमजोरी, बढ़ाए रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. 100% natural Ayurvedic supplements that make you feel stronger and more confident. Aapki jeet, Dabur Shilajit. Consult your doctor before taking medicines and pharmaceutical products.
1: Woh aa gaya. Dekho. Dekho woh aa gaya.
2: Naam hai Sid on the Big Breakfast. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Fasten your seat belts. Kyunki डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. फ्रॉम हाई स्पीड चेजेस डाउन द ऑटोबान टू ड्रामेटिक डॉन 2 स्टाइल व्यूज, वी आर टेकिंग यू स्ट्रेट इनटू अ ब्लॉकबस्टर एडवेंचर. वी आर कीपिंग इट अ टॉप सीक्रेट, सो स्टार्ट गेसिंग. गेट रेडी टू पैक योर बैग्स बिकॉज द बिग चेक इन इज कमिंग योर वे. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यू प्रॉपर्टीज, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, associate sponsors Ford and Sharaf DG. Coming soon on Big 106.2.
3: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
4: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
2: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
5: 1 + 1 = 3.
6: That's not right.
5: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
6: Really? And these 4 designs to choose from?
5: Yes, really. There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
6: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
2: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 8:08।
1: Bollywood.

0: The Prophecy and Zara Khan with Kudiye Ni Teri. And दो दो कुड़ियों को लेकर परेशान हो गए the coach of the Egyptian national football team.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: ऐसी वैसी नहीं, उनकी खुद की दो बीवियां थी. अब Egyptian national football team की controversy just does not seem to end. So he was on a holiday. Yeah, Egyptian men's football team के coach, you know, उनका चेहरा देखते या पहचान. अच्छा हाँ. If you've followed the football World Cup, even just a bit, Egyptian football coach ka chehra to aapko yaad ho gayi. The same guy, Hossam Hassan, he was on a holiday, jahan par ek bizarre situation unki zindagi mein ho gaya. So, on this holiday, he was with his two wives, and suddenly, out of nowhere, wo dono jhagadne lagi, marpeet karne lagi, ek dusre ka baal khichne lagi. And this, isko dekhkar, jo Hossam saab the, वो इतना ज्यादा परेशान हुए दैट ही एक्चुअली फेंटेड, ही कोलैप्स्ड एंड हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. नाउ इट डजंट एंड देयर. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स, ही हैज फाइल्ड फॉर डिवोर्स फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ. ऑब्वियसली ही इज काइंड ऑफ रियलाइजिंग दैट इट्स बेटर कि एक मैं और एक तू.
2: एक मैं हूं और एक तू.
0: वाओ यार, दिस इज माय फेवरेट स्टोरी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट. Benny Deol with Ek Main Aur Ek Tu coming up in just a while. Kitna drama ho raha hai is bande ki. Ek bande ki zindagi mein itna drama yaar. But lots of drama happened yesterday in the Pakistan versus England ka first test match, first day. So uske baare mein baat karne wale hain. Also India managed to win the first test match against Sri Lanka, but not without its own share of drama. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
1: Big 106.2. Big 106.2.
3: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
4: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड.
3: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में.
3: चलो चले अलराज.
1: Fasten your seat belts, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Daniel Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG. Coming soon on Big 106.2. The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. The Big Mix, weekdays 1 to 5 p.m. only on Big.

0: Big 106.2 पर this is the Big Breakfast with me Sid and this is one of my favorite Bollywood stories.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2 The Beat of Bollywood.
0: मतलब कि बॉलीवुड में एक्टर की लाइफ कितनी टफ होती है. इसको इसका एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो इट इज आर बर्थडे स्टार का एग्जांपल. सो ही वाज ऑन अ मंथली पेरोल ऑफ 35,000 रुपीज फॉर 4 years. मतलब 4 साल तक 35,000 रुपए मिल रहे थे पर मंथ बाय राम गोपाल वर्मा. ये तो ठीक है बट देन इसमें एक क्लॉज भी था दैट ही कुडंट डू एनी अदर प्रोजेक्ट्स अंटिल हिज मूवी डी रिलीज. इस चक्कर में यू नो काइंड ऑफ रोल्स दैट ही हैड टू टर्न डाउन. ही टर्न डाउन रंग दे बसंती. He turned down Rock On because of that 4 saal ka contract. And he also rejected a role in Ab Tak Chhappan. Kiski baat main kar raha hun? He's a professional ghodsawar equestrian sport mein. He competes national polo championship and he owns multiple horses also in Mumbai. But one role jiske liye har koi inko yaad karta hai was in this film called Kick. Isme he was opposite Salman Khan.
2: Aapko to Olympics mein hona chahiye tha. Ye kahan police ki naukri mein lag gaye? Medals to wahan par bhi milte hain.
3: Challenges se tujhe bahut kick milte hai na.
2: Kya baat hai partner? Nishana bhi tez aur dimag bhi.
3: Aur mera dimag keh raha hai ki tu yahin kahin aas paas hi hai.
2: Einstein jaisi soch wale officer ko salute karne ka dil karta hai. Lekin ek baat hamesha yaad rakhna. Tu hamesha mere niche hoga. और मैं तेरे ऊपर.
3: मछली चाहे कितनी भी तेज हो एक बार कांटे में फंस जाए तो किलो के भाव दिखती है.
0: ये मछली वाला डायलॉग किसका है? उनका आज 50th बर्थडे. इफ यू फिगर आउट हु आई एम टॉकिंग अबाउट गिव मी अ कॉल 800-1062. बेसिकली ये गाना जिस फिल्म का है उसके एक्टर. भाई बहुत सारे क्लू दे दिए. इतने सारे क्लू. It's very, very simple now. Give me a call right now. 800-1062. If you figure out who I'm talking about, you win 2 open movie tickets in the big Bollywood quiz right here on The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 9:09।
1: बॉलीवुड।

0: बहुत कोशिश किया नकाश अजीज ने कि स्लो मोशन में गाना रहे, लेकिन इन द एंड ही हैड टू मेक इट फास्ट, ओनली सुपर फास्ट वर्जन ऑफ स्लो मोशन नकाश अजीज की आवाज। एंड ऑन द फोन लाइन, स्लो मोशन तो नहीं लेकिन स्लो वॉल्यूम में जरूर बात करने वाले हैं अनुज, हु इज गोना बी टॉकिंग ऑन द बिग बॉलीवुड क्विज।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: आई लव इट व्हेन इट टर्न्स 9 o'clock बिकॉज आई गेट टू get a feel, a flavor of what the corporates are feeling like, looking like, you know, in the UAE. And Anuj, खुसफुसा के बात करने वाले हैं। मैंने कहा अनुज ठीक से कोई पैंट्री वेंट्री में जाके बात करो, तो कहते नहीं यार कुछ पंगे हो गए। अनुज क्या पंगा हो गया यार?
2: अरे पंगा नहीं, 9 बजे का टाइम है, पार्क करके 2-3 मिनट ऊपर आने में लग गए, तो सुपर बॉस ने कुछ कमेंट किसी को मारा, तो पता नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ रूम मेरे लिए था कि किसी और के लिए था।
0: अरे यार जितने भी लोग सुन रहे हैं ना इस वक्त, दे रिलेट विद यू प्रो मैक्स, आई एम टेलिंग यू। एक कमेंट पास किया बॉस नाम के प्राणी ने, अब वो किसके ऊपर लागू है, हु इज द वन पर्सन दैट इट वाज इंटेंडेड फॉर, ये सस्पेंस चलने वाला है टिल 6 o'clock दिस इवनिंग। एम आई राइट अनुज? यूजुअली पता चल जाता है या योर बॉस इज मोर ऑफ अ यू नो छुपा रुस्तम काइंड ऑफ अ कैरेक्टर?
2: नहीं, उसने जोर से ही बोला किसी कलीग को, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट, एक्चुअली न्यू जॉब है इसके लिए।
0: अच्छा न्यू जॉब है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप दैट जॉब अनुज, कांग्रेचुलेशंस, बिलेटेड ही सही, जॉब लगती है तो खुशी तो होती है चाहे कैसी भी जॉब हो। बट अनुज लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत कुछ क्लूज दिए थे अबाउट दिस गाय जिसकी एक्टिंग की तारीफ नसीरुद्दीन शाह भी करते हैं, ही वॉज इन दिस फिल्म कॉल्ड हाईवे एंड देन ही वॉज अ 35,000 rupees पर मंथ का 4 साल का मंथली पैकेज बाय रामगोपाल वर्मा, इन विच ही हैड अ नॉन डिस्क्लोजर, मतलब वो किसी और फिल्म को साइन नहीं कर सकते थे। किसका बर्थडे, हु सेलिब्रेट्स हिज 50th बर्थडे टुडे?
2: रणदीप हुड्डा।
0: एब्सोल्युटली रणदीप हुड्डा इज द करेक्ट आंसर। आपने जीते हैं 2 ओपन मूवी टिकट्स, कांग्रेचुलेशंस। इफ दैट कमेंट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, देन आपको एक उपाय है, यू कैन से कि सिड ने मेरे को 2 टिकट जिताए हैं बॉस, इसमें से एक मैं आपको दे दूंगा, मुझे माफ कर दो। रोज सुबह हम खेलते हैं द बिग बॉलीवुड क्विज, इट इज रणदीप हुड्डाज बर्थडे टुडे, दैट वॉज द करेक्ट आंसर। रोज सुबह मौका आपके पास टू विन दीज 2 ओपन मूवी टिकट्स एज वेल।

0: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
1: फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Danu Properties, coming soon on Big 106.2.
2: School's starting soon and we need a car.
3: Books, uniforms, everything.
2: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
5: Homes R Us big deals are here. Save up to 90% off on furniture and home accessories. Best deals, biggest discounts. Hurry, only while stocks last. Exclusively at Homes R Us, Zabil Furniture Mall, Ood Netta.
6: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: 9:18 and the temperature is 35 degrees Celsius, not in the 40s, which means that the prediction has come true of the NCM ke 5 degrees ka dip. Aaj the 20th of August, humidity is at 61%, winds blowing at 11 kilometers per hour. Eastern regions mein thodi bahut barsaat ke chance bhi hain aaj on this Thursday. Right now, highs of 37, lows of 33 degrees Celsius.
6: Al-Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: This is Big 106.2. It's now time for a tech update.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Oppo नाम की कंपनी तो आपने सुना ही होगी, especially if you're from India. The definitely Oppo के कुछ smartphones वगैरह बीच में काफी famous हो गए थे. But they've come up with a new technology that has gone viral. Now, viral is not equal to good. What has this company done? They've introduced the world's first umbrella with a screen. अब छाते के अंदर भी screen यार. So imagine walking through a rainstorm while scrolling your feed, map check kar rahe hain aap, controlling your music, all projected directly inside your umbrella. It's a viral concept, but I personally think ke bhai kuch zyada ho gaya. This is like taking technology a bit too far, because aap picture to kar rahe ho, imagine to kar rahe ho walking through a rainstorm, lekin what is the most important thing mere bhai log in a rainstorm is to keep your eyes on the road. But if agar aapke chhate mein screen laga hai to aap aisa kaise karoge? What is eventually going to happen? आप एक गड्ढे में गिर जाओगे, और वो दिन दूर नहीं है जब गड्ढों के अंदर भी होगा एक स्मार्ट स्क्रीन. आप गड्ढे में गिरे गिरे पड़े पड़े कर रहे हो डूम स्क्रोलिंग. हाउ इज दैट एज एन आइडिया? बस कर अल्लाह के बंदे.
2: ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा के फिर उड़ना.
0: ऐसी फीलिंग आई गड्ढे के अंदर गिरे हुए. इज दिस गुड टेक्नोलॉजी और इज इट टेकिंग टेक्नोलॉजी बिट टू फार? पुट अप अ पोल अबाउट दिस ऑन आर इंस्टा 106.2 बिग एफएम. दैट इज आर इंस्टा हैंडल.

0: परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड लिरिक्स. और इस वक्त जिस मूड में इस गाने को सुनकर आप अपने आप को पा रहे हैं ना, उस मूड की एक पूरी की पूरी शाम आने वाली. इफ यू नीड एन इवनिंग टू स्लो डाउन अनवाइंड, दिस इज फॉर यू. 29th ऑफ ऑगस्ट जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज सेलिब्रेटेड स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल टू दुबई. वेरी फर्स्ट टाइम इज गोना बी हियर विद अ शो कॉल्ड धक धक. यू कैन एक्सपेक्ट पोएट्री, सोल स्टरिंग स्टोरीज एंड वार्म चाय एट जेम्स अलबर्शा नेशनल स्कूल. दैट्स जेम्स अलबर्शा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन 4:30 शाम को. शो स्टार्ट्स एट 5:30 PM. टिकट स्टार्ट एट 199 dirhams. अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग एज वेल. टू विन टिकट्स कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.
1: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.

0: फिल्म धुरंधर द रिवेंज दैट इज वारी जावा राइट ऑन बिग 106.2. जब भी कोई बॉलीवुड एक्टर जाता है टू द वेस्ट देन वी मेक अ ह्यूज यू एंड क्राई अबाउट इट. यार मतलब रिवर्स कॉम्प्लीमेंट भी अब बनता है ना.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: So apparently, in terms of that reverse compliment that I was talking about, Will Smith is in the news. Why? Not because of what he's doing in Hollywood, but because he is in talks. अभी बातें चल रही हैं, discussion चल रहा है, and हो सकता है he might play the villain opposite Allu Arjun. Allu Arjun के सामने he's going to be playing the villain in a sci-fi epic called Raka. Director है इसके, Atlee is pulling out all the stops for this ambitious sci-fi epic called Raka. Major casting move में the जवान के जो director हैं, आप जानते हैं he did जवान विद शाहरुख खान, या द सेम गाय एटली, उन्होंने ऑस्कर विनिंग एंड ऑस्कर थप्पड़ मारोइंग विल स्मिथ को अप्रोच किया है फॉर अ की रोल इन दिस फिल्म. आगे आगे देखो होता है क्या. भाई बहुत आगे जाने की बात नहीं है. 31st of August इट्स गोना बी बैक टू स्कूल एंड दिस बैक टू स्कूल सीजन इट्स टाइम टू पावर अप फॉर AI एम्पलीफाइड लर्निंग एट शराफ DG शॉप फॉर लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स. गेट अ चांस टू विन योर परचेज बैक अप टू 5,000 dirhams विद यू बाय VPay. प्लस स्टूडेंट्स एंड टीचर्स यू कैन एंजॉय एन एक्सक्लूसिव 5% डिस्काउंट. So head to Sharaf DG showrooms today for the best back to school deals in town.
2: Sardar Khan naam hai hamara. Bata dijiyega sabko.
3: Goli nahi marenge sare ko. Keh ke lenge uski.
1: Big 106.2 The beat of Bollywood.
4: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई. एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना.
5: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना.
4: अलरास बोले तो
5: मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं.
4: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी. विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर.
1: Fasten your seat belts, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Daniel Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG. Coming soon on Big 106.2. The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
6: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
7: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में. जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई. एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन एट 4:30 PM. शो बिगिन्स एट 5:30 PM. टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग. अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट. वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.
1: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: It is 9:47 on the clock and let's take a look सबसे पहले at D71. आज यहाँ पर काफी ट्रैफिक है एंड दुबई मॉल की तरफ ज्यादा हुआ ट्रैफिक आपको मिलने वाला है. Then there's also आज Umm Sikkim Street is quite busy. दुबई हिल्स मॉल से गोइंग टूवर्ड्स मॉल ऑफ द एमिरेट्स यू विल फाइंड अराउंड 3 से 4 मिनट की देर है। सर स्ट्रीट पे भी आज ट्रैफिक हेडिंग टुवर्ड्स 44, क्या हो रहा है भाई आज 311 से व्हेन यू हेड वेस्ट देयर इज आल्सो द जंक्शन ऑफ JBT 44 एंड 311, यहां पर 3-4 मिनट की देर आपको मिलने वाली है। देन देयर इज द एक्सपेक्टेड E44 अलखेल रोड गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3 एंड 66 दुबई अलीन रोड पर तो आजकल रोज ट्रैफिक रहता है रसल खोर से गोइंग टुवर्ड्स अल जदाफ।
8: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 10:07।
1: Bollywood.

0: Lamborghini right here on Big 106.2. You learn something new every day on the radio. That's the best part.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: For example, आज मैंने सीखा कि जो इंडियन फिल्म आई थी कमल हसन की, उस फिल्म में जो उन्होंने मार्शल आर्ट्स किया था, यानी कि अपनी दो उंगलियों के साथ, that is actually not something that he invented. It is a very traditional, long running history of that particular thing, and it is not actually a martial art. It is a part of Ayurveda. And you know what a great starting point that is for the conversation that we have in the studios. Mera saubhagya that I've got the very special Jairaj Vaidya with me, and you know, very very special 10 generations se chalta hua ye ek swasthya ayurveda kar rahe hain, marma chikitsa ke practitioner hain, a very very secret practice, very traditional practice, uske ye 10th generation hai. And I've also got Dr. Divya Menon here. So welcome to the studios of Big 106.2.
2: Thank you for inviting us.
0: आपने यू ब्लोन माई माइंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग के वो जो कमल हसन की बात से शुरुआत करते हैं यार, बिकॉज देयर इज अ बॉलीवुड कनेक्शन, वी आर द बीट ऑफ बॉलीवुड. सो ऐसा लगता था कि कमल हसन ने खुद ही वो कुछ दो उंगलियां घुमाते रहते, क्या करते पता नहीं, मन घड़न दे, बट नहीं, इट इज एक्चुअली समथिंग दैट यू आर अ प्रैक्टिशनर ऑफ.
3: यस यस यस. उसके क्या मतलब है, वो उसका नेगेटिव एनर्जी दिखा रहा है.
0: हाँ,
3: ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए कर जाए.
0: राइट.
3: वो तो इसी में दोनों में डिफरेंट है. उसी में अपना गुस्सा की वजह से ही कर रहे हैं.
0: हाँ,
3: ये तो रियल ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं.
0: सो व्हाट यू सेइंग इज कि किसी भी मार्शल आर्ट की तरह, मतलब देयर इज अ पॉजिटिव वे ऑफ यूजिंग इट.
3: यस.
0: एंड देयर इज अ नेगेटिव वे ऑफ यूजिंग इट.
3: यस.
0: नेगेटिव इज कि भी दुश्मनों का
3: खत्म कर रहे
0: हैं, खत्म करो. तो वो कमल हसन कर रहे थे, बट द पॉजिटिव वर्जन ऑफ
3: दैट. यस. ये तो ना आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में मर्मा ट्रीटमेंट है ना, रियल अपना लाइफ बचाने के लिए.
0: हाँ,
3: रियल तो लाइफ बचाने के लिए. अपना कितना पुराना बैक पेन, शोल्डर पेन, एनी पेन प्रॉब्लम है ना,
0: राइट,
3: उसका क्योर करने के लिए, बिना मेडिसिन से क्योर करने के लिए. बट इसका नेगेटिव यूज करने के टाइम है ना, उसका गलत हो जाता है.
0: सो लीव द नेगेटिव एस्पेक्ट्स टू कमल हसन, बट फॉर द पॉजिटिव वी हैव गॉट जयराज वैद्य विद मी. एंड यू नो, कमाल की चीज है, बिकॉज ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन इज सच अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग, एंड इट्स अ वेरी वर्ड ऑफ माउथ यू नो काइंड ऑफ ट्रांसलेटेड थिंग. सो आपने कहा 10 जनरेशन से ये आपकी फैमिली में चल रहा है, विच मीन्स रफली ट्रांसलेटेड हाउ ओल्ड इज दिस?
3: अभी देखो 800 ईयर से ऊपर, उसके बाद में मालूम नहीं पड़ते. 10th जनरेशन तक आप लोगों को मालूम
0: पता है. हाँ,
3: पता है.
0: उससे पहले पता नहीं कितना चल रहा,
3: इतना चल गया मालूम
0: नहीं. एटलीस्ट 800 ईयर्स से.
3: यस, एटलीस्ट 800 वो मालूम है हमारे हिस्ट्री में, हमारा सब लोगों को मालूम है, उसका डिटेल्स हमारे पास है. चाचा ऐसा घूमते ना, वो सबका नाम है, मालूम है सबको.
0: उस दिन किसी डॉक्यूमेंट में मेरे को मेरी परदादी का नाम पूछ लिया, मेरे को याद नहीं है. आपका 10th जनरेशन का ये, दिस इज अमेजिंग है, दिस इज जस्ट अमेजिंग.
3: स्पेशल है ना, ये जो राजा फैमिली है ना, उसी में ट्रीटमेंट करते थे.
0: ओके.
3: या हमारा
0: रॉयल फैमिली
3: में ट्रीटमेंट कर, उसी टाइम का रॉयल फैमिली में हम लोग का चाचा ऐसा ट्रीटमेंट करते था.
0: वंडरफुल. सो इट्स अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद. मुझे लगता था कि आयुर्वेद का मतलब है कि मेडिसिन, यू नो, जो प्लांट्स हैं और जो हर्ब्स हैं उसमें से जो मेडिसिन बनती है उसको खाना, बट नहीं, आयुर्वेद इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट.
3: आयुर्वेद में बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट है.
0: हाँ.
3: ये मर्मा ट्रीटमेंट है ना, एकदम जल्दी आपका क्योर करते हैं.
0: राइट.
3: बिना मेडिसिन से, बिना कोई, अभी देखो आप लोग कोई हॉस्पिटल में जाने के टाइम, एनी जगह जाने के टाइम, कोई बैक पेन है, शोल्डर पेन है, ऐसे बोल के जाएगा.
0: राइट.
3: अपना सुपरमार्केट में जाके आने से ऐसे दवाई लेके आते हैं.
0: राइट.
3: हमारे पास आने के टाइम ना, आपका बिना मेडिसिन है. ये बिना मेडिसिन से हम लोग, आप लोगों को कितना पुराना, अभी 25 ईयर हो गया बैक पेन, माइग्रेन, शोल्डर पेन, हम लोग बिना मेडिसिन से ये क्योर करते हैं.
0: अमेजिंग. बिना मेडिसिन, नो मेडिसिन, विच मींस नो साइड इफेक्ट्स,
3: कुछ नहीं.
0: एंड विच मींस दैट इट्स अ वेरी वेरी एनर्जी ओरिएंटेड प्रोसेस. ये क्या है, वी गोना गेट इनटू डिटेल्स, यू नो, दे हियर फॉर वन फुल आवर हियर. तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं अबाउट दिस फैबुलस यू नो प्रैक्टिस ऑफ मर्म चिकित्सा बाय यू नो Jairaj Vaidya here in the studios with us, or Dr. Divya Menon, then give us a call right now, 800-1062. And let me tell you, you know, jo ye symptoms hote of migraine, of neck pain, you know, also tinnitus, vertigo,
3: yes,
0: all these kinds of things jo normal doctors hain, unke paas jao to kahenge, nahin, iska koi cure nahin hai, lekin iski hum log pain management is the most that we can do. Iske cures ke liye, you can actually go to Jairaj Vaidya. So, more on that coming up in just a while. In the meantime, in case aapke paas koi questions hain for Jairaj Vaidya and this wonderful practice of Marma Chikitsa, give us a call, 800-1062 per.
1: Big 106.2.

0: डॉक्टर साहब, ये वर्टिगो टिनाइटिस का दर्द मुझे होगा कब तक? बोलेगा पता नहीं कब तक, लेकिन पेन मैनेजमेंट की दवा तो मैं आपको दे सकता हूँ, इसी से आपको खुश रहना पड़ेगा, बट नॉट इफ यू टॉक टू जयराज वैद्य एंड अंडरटेक मर्म चिकित्सा.
1: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. insurancemarket.ae.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: On the phone, I got Amar with me. Amar, kaisa kai bhao, barai? नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. एंड बरा तो है, लेकिन एक इनका पेन जो है, वैद्य जयराज वैद्य हमारे साथ हैं इन द स्टूडियोज, और ये जो पेन है उससे काफ़ी लिंपिंग करते हैं. अमर, कैन यू टेल जयराज वैद्य व्हाट एग्जैक्टली यू आर सफरिंग फ्रॉम?
3: गुड मॉर्निंग जयराज जी.
0: यस, गुड मॉर्निंग, बोलिए.
3: मेरा जो लेफ्ट लेग है ना, लेफ्ट पैर है, उसमें जो मैं थोड़ा लिंपिंग करता हूँ और थोड़ा नीचे का जो हिस्सा है उसमें दर्द होता है रात को सोने के वक्त. अभी थोड़ा उसको ऑयल वगैरह लगाया तो बाद में ठीक होता है, लेकिन दिन में बहुत तकलीफ देता है.
4: ये कितना साल हो गया सर?
3: ये एक्चुअली अराउंड 1 ईयर तक हो गया.
4: नहीं, ये क्या मालूम है, अपना आपका एनर्जी पॉइंट है ना, आपका बैक है ना, बैक में थोड़ा तकलीफ होना स्टार्ट हो गया. इसका वजह से आपका वो नस है ना, नस में कीच हो रहा है वो. अभी है ना, देखो हमारा आयुर्वेदिक सेंटर है करामा में.
3: ओके,
4: हेलो.
3: यस यस यस, सुन रहा हूँ.
4: करामा में, करामा में आ जाओ. हम लोग उधर कंसल्टेशन फ्री है, 100% फ्री होते हैं. हमको आके मिलो, हमारा डॉक्टर को आके मिलो, वो तो पूरा हम लोग डिटेल्स बता के देगा आपका किधर से किधर तक ये एनर्जी पॉइंट्स इन में ना वीक हो गया. इसका बिना मेडिसिन से, बिना हम लोग का ना, बिना मेडिसिन से आप लोग का क्योर करते हैं.
0: सो बेसिकली आप जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, सो अमर का जो प्रॉब्लम है, व्हाट कुड दिस बी? मतलब ये जो हमारे बॉडी में एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, उसमें सम एनर्जी पॉइंट इज फाउंड अ बिट लैकिंग, या क्या लगता है?
4: वो लॉक हो गया. अच्छा, एनर्जी पॉइंट लॉक हो गया. तो कभी कभी है ना, उसका L4-L5 बैक साइड है ना, नस में कीच होना स्टार्ट हो जाएगा. हम लोग सोचेगा दर्द, देखो लाइफ में ना हम लोग दर्द फील करते हैं ना,
0: राइट,
4: वो जगह में कुछ नहीं होएगा. इसका एक एनर्जी पॉइंट से लॉक होता है, कभी कौन सा जगह में वो ही चेक करते हैं.
0: सो अमर, जब आपके सेंटर पे आएंगे इन करामा, राइट, फॉर अ फ्री कंसल्टेशन, तो बताइए कि व्हाट कैन पीपल एक्सपेक्ट? मतलब इज दिस मोर लाइक एक्यूप्रेशर, इज इट मोर लाइक मसाज, या किस तरह का ट्रीटमेंट होता है?
4: ये दोनों मिला के होते हैं. क्यों मालूम है, ये एक आयुर्वेदिक का टाइप ऑफ मसाज होता है. वो एनर्जी पॉइंट का एक्टिव करके देता है,
0: राइट.
4: नॉर्मल वेलनेस थेरेपी होते हैं ये, बिना दवाई से क्योर करते हैं,
0: राइट.
4: क्यों, वेलनेस थेरेपी इज टोटली डिफरेंट है,
0: करेक्ट.
4: हमारा इस मर्मा एनर्जी पॉइंट का हम लोग पहले आएगा, एक पेशेंट आएगा तो उसका ड्राइंग बनाते हैं,
0: right,
4: कितना
0: right.
4: कितना एनर्जी
0: पॉइंट्स का ड्राइंग
4: बनाते
0: और कौन सा पॉइंट कितना
4: वीक आगे,
0: हो गया, कितना
4: आगे पीछे हो गया, ये इसको ड्राइंग बना के उसका पूरा समझा के बाद में हम लोग.
0: और कोई एवरेज नंबर ऑफ सेशंस होते हैं या देखने के
4: ये
0: बाद?
4: कितना भी पुराना चीज है ना,
0: राइट.
4: अभी 35 ईयर, 25 ईयर, 20 ईयर बैक पेन, बैक कोई भी दर्द वाला प्रॉब्लम 10 डेज में क्योर करते हैं.
0: सो अमर भाई, आप बताओ कैसा गया? एकदम फ्री कंसल्टेशन के लिए आप पहुंच सकते हैं करामा ब्रांच में, स्वास्थ्य आयुर्वेदा में. तो दिल सी यू वेरी सून, राइट?
3: श्योर. मैं एड्रेस दूंगा गूगल पे और जाके आता हूँ उधर.
0: एड्रेस एग्जैक्टली आपको हम बता सकते हैं राइट नाउ?
5: ये ज़ोमरो के बिल्डिंग में है, 4th फ्लोर, 47B, करामा में,
0: राइट, करामा में.
5: आने से पहले कॉल करके बुक जरूर करें और फिर आ जाइए, ठीक है?
0: Perfect. Amar is going to be there in Karama. So thank you so much, Amar. Really appreciate your call.
3: Thank
0: and get well soon. Yeah.
3: Thank you, sir.
0: Take care. Thank you, Siddharth. Amar ki tarah, agar aapke paas bhi koi sawal hai for Jayaraj Vaidya, you can always feel free. Give us a call. The number is 800-1062. It's all about the energy. It's all about the chakras, like they say.
4: Yes.
0: And total kitne hote hai humari body mein?
4: 108 energy point hai.
0: Right.
4: Uske active kar rahe hum log. है ना, कितना भी पुराना चीज़ है ना, हम लोग का 10 दिन में एक्टिव कर सकते हैं. हम लोगों ना कितना कोई हम लोगों के पास है ना, कितना 25-35 ईयर का पुराना माइग्रेन रखे ना, सब घुमाते, कोई टेंशन का बात नहीं. हम लोग का 10 दिन में इसका क्योर करके देखते हैं,
0: राइट.
4: बैक पेन भी
0: things back like pain. Frozen shoulder, yes. back pain, things like, you know, people yes. are left with no choice but to yes. kind of live with. Also, maine suna hai tinnitus,
4: yes.
0: vertigo,
4: yes.
0: ye sari cheezon ka cure agar aapko chahiye, then you got to head out to Jairaj Vaidya and wonderful Swasthya Ayurveda. So,
4: right now, bina medicine.
0: Bina medicine, that's the key out there. Bina medicine, no medicine equal to no side effect at all. So, in case you have some questions, just like Amar did, feel free, give us a call right now. The number is 800-1062.

0: और राशिद भाई भी यही सवाल पूछ रहे कि यार 5 साल से मेरे को बैक पेन हो रहा है, तरस नहीं आता क्या? लेकिन डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं है. जयराज वैद्य इज हियर इन द स्टूडियोज विद अस, डॉक्टर दिव्या मेनन एज वेल. राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया यार. आपने बताया कि कुछ 5 साल से आपको बैक पेन है, कुछ डिटेल्स बताइए.
1: जी मेरा 5 साल से मेरे को बैक पेन से नीचे में दर्द कर रहा है.
0: हाँ,
1: नीचे भी बैक जा रहा है.
0: और आप यहाँ पर ड्राइविंग का काम करते हैं?
1: जी जी, इधर ड्राइविंग का काम करता है 3 साल से.
0: ऑलराइट, सो चलो बताते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर दिव्या एंड जयराज वैद्य क्या कहते हैं इसके बारे में.
2: हेलो राशिद, जैसे सिद्ध ने बताया आप ड्राइविंग का काम करते हो, जाहिर है आप काफ़ी घंटे टैक्सी में बिताते होंगे और एक ही पोस्चर में बैठ के ड्राइव करते होंगे. 5 साल से यदि आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आपको ज़रूर स्वास्थ्य में एक बार आना चाहिए. कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, हम लोग मर्मा चिकित्सा करते हैं. मर्मा ट्रीटमेंट मतलब बगैर दवाइयों के और किसी भी चीज़ के, आपको सिर्फ सेशंस के लिए आना है. ये एक टाइप ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिसमें प्रेशर पॉइंट्स को दबा के ट्रीट किया जाता है. तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपको कोई परहेज़ नहीं देखना है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, क्योंकि अंदरूनी दवाइयां तो है ही नहीं खाने के लिए कुछ भी. बस आप एक बार स्वास्थ्य में आएँ, अपने आप को दिखाएँ. कंसल्टेशन बिल्कुल ही फ्री है, आप बुक करके आएँ. और कम से कम 7 से 10 दिन अगर आप बस 1 घंटे के लिए आ सकते हैं हमारे क्लिनिक में, तो हमारे वहाँ जयराज वैद्य हैं जो आपको पहले एग्जामिन करेंगे. आपके प्रेशर पॉइंट्स में कहाँ गड़बड़ी हुई है वो देखेंगे. आपको हम समझाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और क्या करनी है. और बस आप 10 दिन के लिए आ जाएं, 1 घंटा निकाल के. आपकी 5 साल पुरानी प्रॉब्लम हम 5 से 6 दिनों में ठीक कर सकते हैं.
0: क्या बात है, जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर दिव्या की उर्दू भी बहुत अच्छी है. सो यू नो नॉट जस्ट हर हिंदी एंड हर इंग्लिश एज वेल.
1: लोकेशन किधर है सर?
0: क्या कह रहे हैं, सॉरी,
1: लोकेशन किधर है?
0: लोकेशन करामा में है और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन. इनका नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, इट इज 04, लैंडलाइन नंबर है 3977886. दैट्स द नंबर 3977886 पर आप कॉल करें एंड सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है. लाइक शी सेड, इट इज एब्सोल्युटली फ्री. तो अगर 5 साल से आपको प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली एक विजिट तो बनती है यार. राशिद भाई थैंक यू सो मच, कीप डूइंग द वंडरफुल वर्क, कीप द व्हील्स ऑफ द यूएई रनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. या ओके बाय. राशिद भाई की तरह, अमर की तरह, अगर आपके पास भी कोई इश्यूज हैं दैट बीन निगलिंग यू फॉर अ वाइल, सम हेल्थ इश्यूज दैट यू वांट टू कंसल्ट विद जयराज वैद्य, डॉक्टर दिव्या मेनन हु स्पीक्स एकदम साफ उर्दू, यू कैन गिव अस अ कॉल 800-1062 पर.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Great news, Ajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward, plus exclusive member discounts. Safir Market. More choices, more savings, more reasons to shop.
2: Big cash and big ticket.
3: 15 million dirham grand prize.
2: Win up to 1 million dirhams with Big Spin.
3: Plus 5 consolation prizes.
2: Buy now at bigticket.ae.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
1: Listen to her every day.
5: Mugambo. Khush hua.
6: तीन रीजंस बताओ कि लोगों को शादी क्यों करनी चाहिए. जैसे मैं सिंगल हूँ.
7: एक है कि लाइफ में मोटिवेशन रहता है.
6: अच्छा, किस चीज का?
7: आई मीन इट इज अ नेसेसिटी दैट
6: इट इज अ नेसेसिटी करना है. अभी ज्यादा खुश हो कि सिंगल ज्यादा खुश थे?
7: अभी ज्यादा खुश है.
6: आपकी वाइफ साइड में बैठी है? अगर बीवी नहीं बैठी होती तो फिर आप कुछ और ही बताते. मुझे anyway, we'll play this fun game. It's called the 5-second rule. All the very best. तीन लड़कियों के नाम जो एस से शुरू होते हैं.
7: सहना,
6: और
7: सौम्या,
6: और
7: सृष्टि.
6: सृष्टि कौन है ये?
7: सृष्टि पता नहीं.
6: अच्छा, और सौम्या और सहना?
7: सहना तो वाइफ है जो मैंने पहले ले लिया था.
6: अच्छा, और सौम्या कौन है? सहाना आप साइड में बैठी है, प्लीज इनसे पूछिए ये सौम्या कौन है, क्योंकि ऐसे फटाक से नाम आते नहीं है. कपल्स डे के दिन कलेश कराते हैं. मैं क्या.
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी. ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: It is 10:34 on the clock and let's take a look at the capital Abu Dhabi. Yahan par aapko traffic milega Dalma Mall ki taraf jata hua E30 pe, and this is heading toward Musaffa Industrial as well. Everything else seems to be quite smooth going. Chalte hain Dubai Sharjah ki aur, heading south 311 E11. Both these arteries will find 5 to 6 minutes ka delay. Then industrial area is quite chock-a-block this morning. Dono east and west jata hua traffic ka milega aapko. Industrial area 6 pe, industrial area 10. There's also S116 heading towards 611. You'll find 5 se 6 minute ki der.
9: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
10: पर ये बात, ब्रो,

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Jairaj Vaidya, Dr. Divya Menon from Swasthya Ayurveda in the studios with us. Aur bahut maza aa raha hai aap log se baat karke. Itni achi achi cheeze hame janne ko mil rahi hain about traditional medicine. 10th generation के हैं, 10 जनरेशन से, अराउंड मिनिमम 800 ईयर्स से ये ट्रेडिशनल मेडिसिन चल रहा है. इट्स नॉट अबाउट मेडिसिन एट ऑल, इट इज विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइड इफेक्ट्स. अगर आप मर्म चिकित्सा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यू कैन हेड आउट टू देयर ब्रांच इन करामा. आई गॉट टू वेरी क्रूशियल क्वेश्चंस व्हिच आई एम श्योर आर ऑन द माइंड्स ऑफ एवरीबडी लिसनिंग टू अस राइट नाउ. सबसे पहले एज ग्रुप, कोई एज लिमिट है, मतलब बच्चे आ सकते हैं आपके पास, या फिर यू नो इज देयर अ अपर एज लिमिट टू हु कैन एक्चुअली प्रैक्टिस मर्म चिकित्सा?
2: मर्म चिकित्सा इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन टू एज कैटेगरीज. चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 3 इयर्स हम नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स ऑल टू डू विद हाई प्रेशर एनर्जी पॉइंट्स का थेरेपी. ओके, एंड समबडी हु इज अबव 65 और प्रोबेबली 70, वो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट कैपेसिटी की. देखिए, कोई 60 साल का इंसान है, कुछ लोग बहुत हेल्दी एंड यू नो स्ट्रांग इनफ होते हैं कि वो इतना एनर्जी प्रेशर बेयर कर सके. पर कुछ लोग ऑलरेडी कुछ कंडीशंस की वजह से वीक होते हैं, जैसे स्ट्रोक आ गया हो तो ऑलरेडी वो डेबिलिटेटेड हैं, काफ़ी वीक है. तो ऐसे लोगों में हम डायरेक्टली जाके प्रेशर पॉइंट्स नहीं दबा सकते, बिकॉज दे कैन नॉट टेक इट. एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एज के अलावा ऐसी भी चीज़ों में है, जैसे कोई प्रेग्नेंट है, वी कॉन्ट डू दिस, क्योंकि कोई भी मर्मा पॉइंट्स प्रेस किए तो इतनी सारी एनर्जी पास होती है इकट्ठा कि अबॉर्शन भी हो सकता है बेबी का. तो हम प्रेग्नेंट वेमेन में कुछ भी नहीं करते, मसाज टेक्निक्स या मर्मा थेरेपी कुछ नहीं करते.
1: सो बिलो 3, अबव 60,
2: यस, एंड
3: डिपेंड अपना बॉडी को देख रहे हैं.
2: अबव 60 वाला स्ट्रांग इनफ है, वो बेयर कर सकता है, तो वो एनालाइज करने के बाद हम डिसाइड करते हैं वेदर वी कैन डू मर्मा और वी हैव टू डू नॉर्मल आयुर्वेदिक थेरेपी. एंड जिनके अंदर इम्प्लांट्स होती है, मेटल इम्प्लांट्स या पोस्ट फ्रैक्चर में उन्होंने कोई स्टील के प्लेट्स लगाए, पेसमेकर्स हैं, आर्टिफिशियल कुछ भी प्रोस्थेटिक उनकी बॉडी में लगा हो, तो उस तरफ तो हम बिल्कुल भी प्रेस.
1: हाउ अबाउट स्टेंट्स?
2: स्टेंट्स इज फाइन. स्टेंट वाले बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं. स्टेंट्स डेफिनेटली आर्टरीज के अंदर होता है, तो काफी हमारे जो चेस्ट में जो एक बोन केज है ना, रिब केज, उसके अंदर होता है. वहां तक तो वैसे भी हमारा हाथ या प्रेशर घुसता नहीं, फिर भी स्टेंट्स तक ठीक है. बाकी जो एक्सटर्नल मस्कुलर सरफेस या फेशिया के नीचे जो भी इम्प्लांट्स है, वहां जाके हम प्रेस नहीं कर सकते. स्पेशली बोनी फ्रैक्चर्स में कुछ प्लेट्स या मेटल स्क्रूज हो, किसी ने डिस्केक्टमी कराई हो और प्रोस्थेटिक स्क्रूज वगैरह स्पाइन सर्जरी के बाद लगाए, तो उसमें ज्यादा हम प्रेशर नहीं कर सकते. तो उनको भी मर्मा चिकित्सा निषिद्ध है, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड.
1: Correct. And of course, the other most important question that everybody has when it comes to anything medicine is the big I word, which is insurance. Insurance, maine suna ki insurance is also like covering?
2: Yes. As far as your insurance covers Ayurveda and your policy, or Ayurveda, homeopathy, podiatry, chiropractor and herbal medicine, Chinese medicine, इन सबको alternative medicine benefits में include किया गया है. अगर आपकी policy premium enough है कि वो alternate benefit cover करती है, तो definitely Ayurveda भी आप उसमें claim कर सकते हैं, provided कि ये reimbursement में होता है. आपको पहले pay करना पड़ेगा पूरा, एंड हम आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना के देंगे, वो आप अपने HR में सबमिट करें या ऑनलाइन भी सबमिट करें ऐप के थ्रू, तो आपको पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा.
1: That is amazing. Yeah. That is so good to know that alternative medicine, if your insurance policy is covered, then this is going to be also covered. It's been an absolute honor to have you in the studios. Bahut hi maza aaya. Right from Kamal Hassan se lekar humne pata nahi kis cheezon ki baat ki. Royal treatment karte the, you know, inke purvaj.
2: Sir ke paas bahut sare umda sheikh log aate hain.
1: Haan. Right.
3: नाम बोल सकते,
1: high profile clients हैं यहाँ पर. So you know they've got a branch in Karama. Can you just tell us the address once more? कि कहाँ पर आपका branch है? It is absolutely, the consultation is free of charge.
2: Yes, consultation is free. You just have to book and call and come to 4th floor, 47B Zomaroda Building, Al Karama. Zomaroda Building है, Huzaifa Furniture के ऊपर है.
1: Right.
2: Landmark बोले तो करामा पोस्ट ऑफिस है, पुराना वाला, अभी तो ऑपरेशनल नहीं है. करामा पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल बगल में
3: लेबोरेटरी है ना, नया एक मेडिकल लेबोरेटरी है. गवर्नमेंट का
1: करामा पोस्ट ऑफिस इज योर लैंडमार्क एंड द नंबर इज 04397886. इसको कॉल कीजिए, बुक एन अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फ्री. बस अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू है, जस्ट फिगर आउट व्हेन इट इज अवेलेबल एंड देन यू कैन जस्ट हेड आउट देयर.
2: बुक करके आ जाए तो फिर तो अवेलेबिलिटी.
1: या सो
3: 39 लोकेशन में पर अपना देखे तो मिल जाएगा.
1: हाँ, एंड यू कैन यूज द प्रोमो कोड सिड एज वेल. उससे आपको एक्स्ट्रा 200 दिरहम देने पड़ेंगे. बट द नंबर इज 04397886. That's 397886. It's been an absolute honor to have you here. And you know,
2: parking
1: itna kuch
2: free hai, sir.
1: Parking.
3: हमारे पास पार्किंग बोलिए.
1: ये सबसे इम्पोर्टेंट आप कहाँ छुपा के रखा था डॉक्टर मेनन? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. स्टार्टेड विद दिस. पार्किंग फ्री है, इंश्योरेंस भी कवर हो सकती है, फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन इज ऑल्सो फ्री. बताओ और क्या चाहिए. सो बस आ जाओ. और कुछ मिलेगा वहाँ पे? कुछ चाय कॉफी वगैरह
3: सब कुछ मिलेगा.
1: हमारे कॉफी इज आयुर्वेदिक.
2: नहीं, वो हमारे हर सेशन के बाद स्पेशल ड्रिंक बनाते हैं.
1: अच्छा.
2: एक ग्रीन टी टाइप की चीज है, हर्बल. तो वो तो वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री है.
1: अमेजिंग यार. सो
3: हमारा मेन पार्ट है ना, हमारे पेशेंट का हैप्पी करके जोड़ना. क्यों इन लोग ना इतना दर्द से ना वो दवाई का के एकदम परेशान हो जाते हैं.
1: Absolutely. In my family, I have some people who suffer from tinnitus.
3: Yes.
1: And tinnitus, जिनको नहीं पता, you know, it is that कि भी आपके कान में आवाज आती रहती है.
3: Yes, yes.
1: उसको कोई cure नहीं है. Imagine दिन भर 24/7 आपके कान में आवाज आ रही है. And there's no cure for it. In allopathy, doctors say कि नहीं इसका तो हम तो ये कुछ है, वह घुमाते फिराते रहते हैं. But tinnitus ले लीजिए, vertigo, frozen shoulder, migraine. Yes. Which is like the big bane of medicine. इसका भी आपको
3: हमारे पास है ना, कितना पुराना migraine patient आते हैं मालूम है? पुराना 35 years से अपना daily ऐसा सोचेगा तो ना इतना हम लोग है ना ये सब cure करके देखने का time है ना, इन लोगों का शिग्र में आते हैं. हैप्पीनेस है ना, वही हमारा एकदम बड़ा
1: राइट.
3: वो क्यों मालूम है? इतना दर्द से एक आदमी घूम रहे ना, हम लोग का बिना दवाई से इसका क्योर करके देने के टाइम वो बस चलेगा.
1: दैट इज अ परफेक्ट नोट टू एंड ऑन. मतलब इतनी सारी चीजें आप लोग ने ट्राई करी है. हेड आउट टू वैद्या, टू जयराज वैद्या एंड डॉक्टर दिव्या मेनन. एंड व्हेन आई से वैद्या, इट्स लाइक इट्स अ टाइटल राइट. जैसे आप वैद्य हैं तो वैद्य के पास जाइए, जयराज वैद्य के पास जाइए.
3: हम लोग का 12 साल हो गया. हाँ. ये स्वास्थ्य आयुर्वेद इधर
2: सेलिब्रेशन
1: 12th एनिवर्सरी. सो दे नो व्हाट दे डूइंग एंड दे आर द पीपल विद ऑल द एक्सपीरियंस दैट यू नीड टू क्योर दोज इश्यूज दैट यू बीन हैविंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन द स्टूडियोज. आई एम श्योर एवरीबडी लिसनिंग इन विल बी वेरी क्यूरियस एंड दे विल बी हेडिंग आउट वेरी सून टू योर ब्रांच इन करामा. स्वास्थ्य आयुर्वेद वहां पर जाइए एंड लाइक आई सेड यू विल फाइंड यू नो solutions to your long-standing problem. This is Big 106.2. Aap sun rahe hain The Big Breakfast with me, Sid. Big.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood. Early in the morning. The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Dabur Pudin Hara. कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो थक थक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिंस एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2। To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:07
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 se main hu Avni aapke saath and last weekend Awarapan 2 and Batwara release hui thi na Clash lekin surprisingly दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी चल रही हैं. स्पेशली अवारापन 2 जो है 150 करोड़ कमा लिया. एंड हैविंग सेड दैट, जब पहली रिलीज हुई थी विच वाज अवारापन 2007 में, दैट वाज अ फ्लॉप फिल्म ऑन बॉक्स ऑफिस. लेकिन क्योंकि उसके गाने इतने अच्छे थे, सबको अवारापन एक नॉस्टैल्जिक बेंचमार्क फिल्म लगी. एंड 2 द सीक्वल हैज क्रॉस्ड 150 करोड़. लेकिन कहना है कि जो हमारे शिवम पंडित हैं, क्योंकि फिल्म जो है ओपन एंड पर ख़त्म हुई है, वो अब नफीसा की टीम में चले गए. ओ माय गॉड, स्पॉइलर दे रही हूँ क्या? आपने नहीं देखी है क्या फिल्म? ओके फाइन, अगर नहीं देखी है तो कल कोई खास फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, आप कल जाके अवारापन 2 देख सकते हैं. बट हैविंग सेड दैट, द क्यू इज़ के शिवम पंडित का अवारापन 2 के बाद भी कम बैक हो सकता है. 3 की बात कर रहा है, पर कौन बात कर रहा है 3 की? आशमी एक तरफ, अक्का बॉलीवुड एक तरफ, अवारा पंडू एक्चुअली हैज प्रूव दैट वी वांटेड दिस. शिवम पंडित, इमरान हाशमी, वंस अगेन यू कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Dabur Pudin Hara. Kuch kahaniyan sirf suni nahi jati, mehsoos ki jati hain. Is 29th August, shor ko piche chhod dijiye aur kho jaiye lafzon ke saaz mein. Zikr brings India's master storyteller Amandeep Khayal with his soul-stirring show Thak Thak for the very first time in Dubai. Ehsaas, chai ki garmahat aur dil ko chhu lene wale kisse at GEMS Albersha National School. Doors open at 4:30 p.m. Show begins at 5:30 p.m. Tickets from 199 dirhams including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2. Listen to her every day.
3: Mugambo, khush hua.
4: Teen reasons batao ki logon ko shaadi kyun karni chahiye, jaise main single hoon.
5: एक है कि लाइफ में मोटिवेशन रहता है।
4: अच्छा, किस चीज का?
5: आई मीन इट इज अ नेसेसिटी दैट
4: इट इज अ नेसेसिटी करना है। अभी ज्यादा खुश हो कि सिंगल ज्यादा खुश थे?
5: अभी ज्यादा खुश है।
4: आपकी वाइफ साइड में बैठी है?
5: आज मैं बैठ के really
4: हाँ, अगर बीवी नहीं बैठी होती तो फिर आप कुछ और ही बताते मुझे। anyway, we'll play this fun game. It's called the 5-second rule. All the very best. तीन लड़कियों के नाम जो एस से शुरू होते हैं।
5: सहना
4: और
5: सौम्या
4: और
5: सृष्टि।
4: सृष्टि कौन है ये?
5: सृष्टि पता नहीं, आ गया सडनली।
4: अच्छा, और सौम्या और सहना?
5: सहना तो वाइफ है जो मैंने पहले ले लिया था।
4: अच्छा, और सौम्या कौन है?
5: और
4: सहना आप साइड में बैठी है, प्लीज इनसे पूछिए ये सौम्या कौन है, क्योंकि ऐसे फटाक से नाम आते नहीं है। कपल्स डे के दिन कलेश कराते हूँ मैं क्या।
2: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 p.m. टू 9 p.m. द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: ट्रैफिक बढ़ रहा है अराउंड द मेजर कॉरिडोर्स, स्पेशली शेख जायद रोड अराउंड बिजनेस वे, डाउनटाउन जबील एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अलखेल रोड पर भी आपको स्लो मूवमेंट दिखेगा, स्पेशली अराउंड अलखूज एंड रसल कोर। अगर आप कहीं पर फंसे हो, डू लेट मी नो, कॉल करो 800-1062 पर।
2: गेट रेडी फॉर स्कूल विद सेल्फ ड्राइव, रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 dirhams अ मंथ फ्लैट रेट विद जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स। बिग 106.2।
7: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
2: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मुखर्जी का उसकी अब नेक्स्ट सीक्वल की टर्न आ चुकी है। सो रिपोर्ट्स आर सेइंग कि ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग जो है ऑफ कोर्स रणबीर कपूर विद आलिया भट्ट शुरू होने वाली है 2027 अप्रैल में। एंड जस्ट नॉट दैट, सीक्वल में बातें हो रही हैं कि दीपिका पादुकोण भी होगी। एंड हैविंग सेड दैट, मुझे तो ब्रह्मास्त्र की यार स्टोरी भूल चुकी है, इतनी पुरानी फिल्म लगने लगी है मुझे मेरे दिमाग में, 2022 में रिलीज हुई थी। बट ऑल आई होप इज कि आलिया भट्ट के इसमें डायलॉग्स थोड़े से ज्यादा होंगे ना पार्ट 1 से।
1: शिवा तुम हो कौन? शिवा
0: याद है ब्रह्मास्त्र की स्टोरी क्या थी? यार मैं भूल चुकी हूँ, प्लीज मुझे बताओ कॉल करके 800-1062। पर टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

0: फायदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Hollywood. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: School's starting soon and we need a car.
2: Books, uniforms, everything.
1: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
1: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
4: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
5: बाहर की गर्मी को एसी कूल करता है और हैवी नील्स के बाद पेट को कंफर्ट देता है डाबर पुदीन हरा योर अंदर का एसी विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर सूदिंग रिलीफ
4: डाबर पुदीन हरा स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे अवेलेबल ऑन नून मिनट्स कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन

0: वो कड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
1: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
2: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2।

0: doesn't want a Sayara vibes, yeah. But if you want one, 29th August is your date.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड अगर आपको भी एक स्लो शाम चाहिए, अनवाइंड करना है खुद को, ऑफकोर्स अपने बेटर हाफ के साथ या फिर अपने पार्टनर इन क्राइम के साथ, दिस इज फॉर यू. ऑगस्ट 29th, जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज सेलिब्रेटेड स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल टू दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज शो, जिसका नाम है धक धक. क्या एक्सपेक्ट करोगे? ऑफकोर्स शेर व शायरी, बहुत सुंदर कहानियाँ एंड अ वार्म चाय एट जेम्स अल वर्षा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो स्टार्ट्स एट 5:30 PM. Ticket starts at 199 dirham exclusively on district including high tea and a free parking. Lekin aapko to of course free mein tickets jeetni hai. To wo jeetne ke liye aapko kya karna hai? You just have to be keep it logged only on Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। बिग
1: टाइम चेक 2:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैं बात कर रही थी यूएई नेशनल डे 2026 होने वाला है 2 December 2 and 3 को विच इज वेंसडे एंड थर्सडे. लेकिन आप ये 2 दिन की छुट्टी को 5 दिन की ब्रेक, 6 दिन की ब्रेक या फिर 9 दिन की ब्रेक में भी कन्वर्ट कर सकते हो. हाउ इज इट पॉसिबल? अगर आप अपनी एनुअल लीव डिसंबर एंड बचा लो, अगर आप 1 बचाते हो आपको 5 दिन का ब्रेक मिलेगा, 2 बचाते हो एनुअल लीव और तभी लेते हो तो 6 डे का ब्रेक मिलेगा, अगर 3 एनुअल लीव बचाते हो उसके बाद आपको ये वाली छुट्टियां मिलाने के बाद 9 दिन का ब्रेक मिलने वाला है. देख लो यार, हमारे छोटे छोटे शौक हैं, छोटी छोटी हॉबीज हैं, छोटी छोटी खुशियां यार, मैं और छुट्टी की बात हो बस. एक ही है, मैं और मेरी छुट्टी. Then show coming your way only on a big 106.2 after this track, by the way. लेकिन आप ये वाली छुट्टियां कैसे प्लान करोगे? 9 दिन की लोगे, 6 दिन की लोगे, जरा बताओ, हम डिस्कस करते हैं. 800-1062 is a number. सबसे अच्छा काम क्या होता है यार, छुट्टी प्रिपेयर करना. That's it. Big 106.2, which is

0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज पीक लंच आवर टाइम हो चुका है. भूख जोरों की लग चुकी है, मुझे पता है आपको भी लग चुकी है. लेकिन यार दे आर फ्यू पीपल जो खुद को फूडी कहते हैं, पर क्या वो असल में फूडी हैं? एंड आई वांट आस्क यू, क्या आप एक असली फूडी हो? क्या आप दो डिशेस में से एक डिश चूज कर सकते हो? बिकॉज आई एम समवन कि मैं दोनों में कंफ्यूज हो जाऊंगी. मुझे दोनों लाके दे दो, मैं दोनों की एक एक बाइट तो खा ही लूंगी यार. आई विल नॉट से नो टू फूड, आई एम इतना वाला फूडी. इफ यू आर अ फूडी, आई एम गोना प्ले अ गेम विद यू. यू कॉल मी 800-1062 पर, इट्स अ टोल फ्री नंबर 800-1062 इट इज. एंड लेट मी गेस एंड लेट द लिसनर्स गेस अगर आप एक सच्चे असल फूडी हो या नहीं हो. 800-1062 it is. Till then, keep listening to Big 106.2. हम प्यार करने वाले हैं यार खाने से.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ और मेरे साथ है one more foodie. Hi Gaurav.
2: Hi Avni, how are you?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? खाना वाना खाया आपने कभी? भूखे बैठे हो?
2: अभी तो भूखे हैं, अभी हम काम पे हैं. So I was driving, I thought of giving a call to you. I was listening to your radio from since one.
1: Okay, चलो आपको भूख लगवा देते हैं. We're gonna play one game and let's see कि आप कितने बड़े foodie हो. You have to choose one. मैं आपको दो options दूंगी खाने के, आपको दोनों में से एक choose करना है, ठीक है?
2: Okay, perfect.
1: भल्ला चाट या पापड़ी चाट?
2: पापड़ी चाट.
1: Okay, पापड़ी चाट या समोसा?
2: समोसा.
1: ठीक है, समोसा या वड़ा पाव?
2: समोसा.
1: समोसा या पाव भाजी?
2: समोसा.
1: समोसा या डोसा?
2: समोसा.
1: समोसा या राजमा चावल?
2: राजमा चावल.
1: ओके, हम कुजीन चेंज करते हैं. समोसा या पास्ता?
2: समोसा.
1: समोसा या बर्गर?
2: समोसा.
1: ओह माय गॉड, समोसा इज फॉर द विन. आज लंच में गौरव समोसा खाने वाले हैं, राइट?
2: यस, छोला समोसा.
1: छोले समोसा? ओह यू मीन रगड़ा पैटी, व्हाट इज इट?
2: Yes, yes.
1: Okay, thank you so much, Gaurav. आपको मैं foodie number one समोसा gift करना चाहती हूँ, but thanks for calling. And भूख लगी है, समोसा खा रहे हो तो मुझे मत भूल जाना यार, मुझे भी call भेज देना. Call नहीं, भेज देना.
2: Then of course. पक्का.
1: ओके, थैंक यू सो मच, बाय
2: बाय, टेक केयर.
1: अगर आपको लगता है कि आप भी बहुत बड़े फूडी हैं, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कॉल मी 800-1062.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:05।
2: Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ and one more foodie has joined me. Hi Anmol.
2: Hello, hi.
1: कैसे हैं आप?
2: कैसे हो?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, पर फिलहाल भूख लगी है मुझे. आपने खाना खा लिया?
2: Not yet. I'm just going to Marina.
1: Okay.
2: Right now, so yeah.
1: तो क्या खाने का इरादा, भी क्या ऑर्डर करने वाले थे आप?
2: No, actually, I was different, पड़ा हुआ था ऑफिस के लिए, but I didn't get a chance to eat yet.
1: Okay. So we yet to decide.
2: Yes.
1: ठीक है, तो शायद जो ऑप्शंस मैं देने वाली हूँ आप उनमें से डिसाइड कर लें. आर यू रेडी फॉर द गेम?
2: यस, श्योर श्योर.
1: व्हाट वुड यू चूज, डोसा या पाव भाजी?
2: पाव भाजी.
1: पाव भाजी. पाव भाजी या समोसा?
2: पाव भाजी.
1: पाव भाजी या पिज्जा?
2: पिज्जा.
1: पिज्जा. ओके. पिज्जा या बर्गर?
2: पिज्जा.
1: पिज्जा. पिज्जा या छोले भटूरे?
2: छोले भटूरे.
1: छोले भटूरे या राजमा चावल?
2: छोले भटूरे.
1: छोले भटूरे या पापड़ी चाट?
2: छोले भटूरे.
1: छोले भटूरे या पाव भाजी? छोले भटूरे. एंड लंच में क्या खाने वाला, छोले भटूरे या पास्ता?
2: छोले भटूरे.
1: ओह माय गॉड, छोले भटूरे फॉर द विन. अनमोल, आर यू पंजाबी? आई एम गोना आस्क यू वेरी स्टीरियोटाइपिकल क्वेश्चन. ओह माय गॉड, बिकॉज़ आई एम पंजाबी, बट आई नेवर चूज छोले भटूरे. कॉम्बो क्या पसंद है आपको, छास का कि लस्सी का?
2: लस्सी मजा आएगा.
1: आपने जो ये लंच टाइम पर मुझे छोले भटूरे प्लस लस्सी का कॉम्बो बता दिया है, आप क्या खाने वाले हो?
2: मेरे पास अभी छोले है, बट बॉइल्ड है, तो छोले वाला, बट बॉइल्ड छोले.
1: द हेल्दियर वर्जन यू से?
2: या द हेल्दियर वर्जन. यस यस यस.
1: ओके, हैप्पी लंचिंग अनमोल.
2: Thank you. Bye-bye.
1: If you think you are a bigger foodie than Anmol, all you have to do is call me 800-1062.

0: फैसन योर सीट बेल्ट, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. फ्रॉम हाई स्पीड चेजेस डाउन द ऑटोबान टू ड्रामेटिक डॉन 2 स्टाइल व्यूज, वी आर टेकिंग यू स्ट्रेट इनटू अ ब्लॉकबस्टर एडवेंचर. वी आर कीपिंग इट अ टॉप सीक्रेट, सो स्टार्ट गेसिंग. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Daniel Properties. Coming soon on Big 106.2. Dabur Pudinhara, just one tiny pearl packed with Ayurvedic mint oils, gives your stomach instant soothing relief. Listen to her every day.
1: Mugambo, khush hua.
2: तीन रीजंस बताओ कि लोगों को शादी क्यों करनी चाहिए. जैसे मैं सिंगल हूँ.
3: एक है कि लाइफ में मोटिवेशन रहता है.
2: अच्छा, किस चीज का?
3: आई मीन इट इज अ नेसेसिटी दैट
2: इट इज अ नेसेसिटी. आप अभी ज्यादा खुश हो कि सिंगल ज्यादा खुश थे?
3: मैं अभी ज्यादा खुश है.
2: आपकी वाइफ साइड में बैठी है?
3: आज मैं बैठ के really not happy the way I'm answering.
2: हाँ, अगर बीवी नहीं बैठी होती तो फिर आप कुछ और ही बताते मुझे. anyway, we'll play this fun game. It's called the 5-second rule. All the very best. तीन लड़कियों के नाम जो S से शुरू होते हैं.
3: सहना, सौम्या
2: और
3: सृष्टि.
2: सृष्टि कौन है ये?
3: सृष्टि पता नहीं, आ गया सडनली.
2: अच्छा, और सौम्या और सहना?
3: सहना तो वाइफ है जो मैंने पहले ले लिया था.
2: अच्छा, और सौम्या कौन है?
3: और
2: सहना आप साइड में बैठी है, प्लीज इनसे पूछिए ये सौम्या कौन है, क्योंकि ऐसे फटाक से नाम आते नहीं है. कपल्स डे के दिन कलेश कराते हूँ मैं. क्या
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM to 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
4: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
5: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ. कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे. हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो.
0: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
8: तुम्हें लग रहा है तुम्हारी सिर्फ भूख बढ़ रही है? नहीं, टेम्परेचर बाहर का 38 डिग्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है, एंड ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है 62%.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन. विजिट अलरास.me.

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ और मुझे पता है कि आप अभी भी सिर्फ और सिर्फ एंडलेस स्क्रोलिंग ही कर रहे थे बट आई हैव गॉट इट कवर्ड. बाप को इतनी स्क्रोलिंग नहीं करनी पड़ेगी टू फाइंड योर राइट रेंटल कार. मीट सिया द सेल्फ ड्राइव्स एआई कार रेंटल असिस्टेंट. आपको बस अपना बजट टाइप करना है, कार टाइप टाइप करनी है, कोई प्रेफरेंस है तो वो लिख देना एंड सिया विल इंस्टेंटली रिकमेंड यू द राइट कार. No endless scrolling, just quick and easy booking process. All you have to do is visit selfdrive.ae today. ये कर लो एंडलेस स्क्रोलिंग की जगह. रूपदी रानी कमिंग योर वे ओनली ऑन बिग 106.2 आफ्टर साड़ी ट्रैक फ्रॉम धमाल 4.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
1: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
2: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आदत तो लग जाती है यार, स्पेशली मुझे मूवीज की लग चुकी है, लेकिन इतनी पुरानी मूवीज के गानों की आदत, भाई दैट्स अनबीटेबल।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 मैं हूँ अवनी आपके साथ, और मैं बात कर रही हूँ 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के बारे में, जो कि फिलहाल इंडिया में रिलीज पर चल रही है। एंड इतनी बड़ी फिल्म थी यार, 1994 में रिलीज हुई थी, ऑफकोर्स मैं तब पैदा भी नहीं हुई थी यार, लेकिन मुझे उसके गाने अभी तक याद हैं, मैं गुनगुनाती हूँ, आई वाइब, दे आर टाइमलेस।
2: एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
0: कैसा लगा बताओ ना मुझे, कैसा लगा? 800-1062 पे कॉल करो और मुझे बताओ कि व्हाट इज दैट वन फिल्म जो आप चाहते हो कि यहाँ रिलीज हो, आई मीन एक्चुअली री रिलीज हो। 800-1062 इज माय नंबर, अ फिल्म दैट यू वांट टू बी री रिलीज्ड, 800-1062 इट इज। टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2, चटपटे सॉन्ग्स, ट्रैक्स कमिंग योर वे, माय फेवरेट। कॉल करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, 800-1062 द टोल फ्री नंबर है यार। माय जॉनर ऑफ सॉन्ग, चटपटे सॉन्ग्स कमिंग योर वे आफ्टर माय लवर दिलजीत दोसांझ ट्रैक जड़ता पे यार। कीप इट लॉक्ड इन टू बिग 106.2।

0: Homes R Us big deals are here. Save up to 90% off on furniture and home accessories. Best deals, biggest discounts. Hurry, only while stocks last. Exclusively at Homes R Us, Zabeel Furniture Mall, Ood Mehta.
1: Kuch kahaniyan sirf suni nahi jati, mehsoos ki jati hain. इस 29 अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में. जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई. एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन एट 4:30 PM. शो बिगिन्स एट 5:30 PM. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
2: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 93.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: वैसे तो 37 डिग्रीज लिखा है टेम्परेचर, लेकिन इट फील्स लाइक 50 बिकॉज ह्यूमिडिटी टॉप नॉच लेवल पर है, विच इज 63%।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: इसके बाद तुम नहीं बोल सकते हो इस ट्रिप के लिए, यू कैन नॉट से कि तुम मेरे नहीं हुए तो ना सही, यू गोना रिग्रेट, आई एम टेलिंग यू बिग टाइम.
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: ठीक है, 106.2 पे मैं हूं अवनी आपके साथ, एंड द बिग चेक इन इज बैक. इमेजिन करो अपने पासपोर्ट के साथ जाते हुए ठुमक ठुमक कर फ्री टिकट के साथ टू एन अमेजिंग डेस्टिनेशन. द बिग चेक इन की ये बात कर रही हूं मैं, ऑफकोर्स प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यू प्रॉपर्टीज, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, एसोसिएट स्पॉन्सर फॉर्ड एंड शरफ डीजी, कमिंग टू यू वेरी वेरी सून ओनली ऑन बिग 106.2. एंड हिंट ये है कि ये सुनने के बाद एकदम पैकिंग करते हुए ऑल यू वुड वांट टू से इज गुड इंटैक्ट.

0: शाम ये राजो छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबू राव गणपत राव आपते बोल
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: Make the school run easier in a brand new Ford. Whether in a spacious Explorer, capable Everest, refined Taurus, or versatile Territory, you'll enjoy comfort, confidence, and smart technology every day. For a limited time, get your down payment covered. Enjoy 5 years or 100,000 kilometer service and warranty. 5 years Ford app access and pay nothing until 2027. Ready, set, Ford. Visit your nearest Altair Motors or your motor showroom today. Shop online, call 800-MOTORS, condition apply.
3: जब चाहिए फ्रॉम इंडिजेशन तब दबन हरा आपको रिलीफ नेचुरली. इसके छुपे पड़े हैं आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ. डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश. डाबर पुदीन हरा योर पॉकेट साइज कंपेनियन. इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन.
4: Don't miss out with Big Ticket.
5: 15 million dirham grand prize.
4: Win up to 1 million dirhams with Big Spin.
5: Plus 5 consolation prizes.
4: Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
7: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे. और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ. कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे. हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड ये एक शाम आप गुजार सकते हैं अपने पार्टनर इन क्राइम, अपने बेटर हाफ के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ. अगर आपको एक शाम चाहिए टू स्लो योरसेल्फ डाउन एंड अनवाइंड योरसेल्फ, 29th August it is. Zikr brings India's celebrated storyteller Amandeep Khayal to Dubai for the very first time for his show. Show ka naam sunke dil dhak dhak karega yaar. Show ka naam hai Dhak Dhak. Bahut achhi sher o shayari aur sundar sundar kahaniyan with warm chai at Gems Al Barsha National School. Doors will open at 4:30 PM. Show start hoga 5:30 baje aur tickets available hain district per starting 199 dirhams including high tea and a free parking. लेकिन अगर आपको फ्री टिकट्स चाहिए, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप योरसेल्फ लॉक्ड इन टू बिग 106.2.

0: करके 2-3 मिनट ऊपर आने में लग गए तो सुपर बॉस ने कुछ कमेंट किसी को मारा तो पता नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट वो मेरे लिए था कि किसी और के लिए था।
1: अरे यार जितने भी लोग सुन रहे ना इस वक्त, देख रिलेट विद यू प्रो मैक्स, आई एम टेलिंग यू, एक कमेंट पास किया बॉस नाम के प्राणी ने, अब वो किसके ऊपर लागू है, हु इज द वन पर्सन दैट इट वाज इंटेंडेड फॉर, ये सस्पेंस चलने वाला है। यूजुअली पता चल जाता है या योर बॉस इज मोर ऑफ अ यू नो छुपा रुस्तम काइंड ऑफ अ कैरेक्टर?
0: नहीं, उसने जोर से ही बोला किसी कलीग को, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट, एक्चुअली न्यू जॉब है इसके लिए।
1: अच्छा न्यू जॉब है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप दैट जॉब अनुज, कांग्रेचुलेशंस, बिलेटेड ही सही, जॉब लगती है तो खुशी तो होती है चाहे कैसी भी जॉब हो। बट अनुज लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत कुछ क्लूज दिए थे अबाउट दिस गाय जिसकी एक्टिंग की तारीफ नसीरुद्दीन शाह भी करते हैं, ही वॉज इन दिस फिल्म कॉल्ड हाईवे एंड देन ही वॉज अ 35,000 rupees पर मंथ का 4 साल का मंथली पैकेज। किसका बर्थडे, हु सेलिब्रेट्स हिज 50th birthday today?
0: Randeep Hooda.
1: Absolutely, Randeep Hooda is the correct answer.
2: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
3: Shrikzad Road is building up through the central Dubai stretch, while Alkhil Road is also seeing heavier movement around Business Bay, Alkuz and Arasal Khor. अगर आप शारजा से आ रहे हैं E11 and E311 are your main watchouts. अगर कहीं और फंसे हो ट्रैफिक में, all you have to do is just let me know 800-1062 पर.
2: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae 30,000 Google reviews के साथ 4.8 star rating भी है. Built in UAE, trusted across UAE.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी एंड फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम. पर आपको पता है ना, मैं हमेशा रहती इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो अस ऑन 106.2 बिग एफएम इंस्टा हैंडल, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो AVNI YAAA के पेज पर. टिल देन कल मिलते हैं 1 से 5 अगेन ऑन द बिग मिक्स ओनली ऑन बिग 106.2.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: गुड इवनिंग, यह बिग थ्रिल मानसी. एक दिन और बड़ा लंबा इंतजार होता है थर्सडे से फ्राइडे का. फिलहाल ऑल सेट टू कीप यू कंपनी अंटिल 9. फैंटास्टिक कंपनी, फैंटास्टिक म्यूजिक, एंड ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद कारियोकिंग. गाड़ी में अपना कॉन्सर्ट होस्ट कीजिए. अच्छा, एक मिथ है, लड़कों को लगता है कि लड़कियां उनके लिए तैयार होती हैं टू गेट देयर अटेंशन. बट ऑनेस्टली ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज आपको तो फैशन समझ ही नहीं आता है. हाइलाइटर को आज किसी ने कहा है पसीना, एंड एक मैं बेल्ट पहन के आई हूँ जिसे देखकर दो तीन लोगों ने, स्पेशली द बॉयज, कमेंट किया है कि कमर में दर्द हो रहा है. तो जिन्हें फैशन ही नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए इतना एफर्ट लगाने की क्या जरूरत है.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:07।
2: बॉलीवुड

0: matured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: आज सुबह तो सॉलिड ट्रैफिक था ऑन शेख जायद एंड शेख मोहम्मद बिन जायद एंड शाम में भी वही हाल है बट ट्रैफिक में व्हेन यू स्टक वी सिंग हियर हम माहौल बनाते हैं गाने गाते हैं व्हाइल यू आर इन द जैम वी जैम विद द कारियोकी
1: कारियोकी
2: आवाज आपकी कॉन्सर्ट आपका ऑडियंस मेरी गाड़ी में बैठे बैठे कैरियोके करेंगे एंड इसमें बहुत सिंपल है सुर लगे या ना लगे दिल लगना चाहिए एंटरटेनमेंट होना चाहिए गाना आया ना आया अगर आपको गाना अच्छा लगता है देन दिस इज इट ना अच्छा गाना तो आई थिंक इज वेरी वेरी पॉपुलर एंड वन ऑफ माय फेवरेट कैरियोके सॉन्ग्स मतलब ये कुछ गाने होते हैं जो आप ठीक ठाक गा लेते हो कैरियोके पे तो ये उन्हीं में से एक है

नंबर बोला भी नहीं है मैंने. एंड ऑलरेडी सिंगर्स जो है वो लाइन पे है. वैसे अगर आप भी ये गाना पहचान चुके हैं, किशोर दा की आवाज में गाना है, अ वेरी वेरी पॉपुलर कैरियोके सॉन्ग. इफ यू हैव गेस्ड इट, व्हिच आई एम श्योर यू हैव, 800-1062 इज द नंबर टू डायल, और एल्स यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप 0543091062 पर. ट्रैफिक में बैठे बैठे दिल लगाने का सबसे अच्छा तरीका गाने गाते हैं. राइट हियर ऑन द बिग थ्रिल, मैं हूं मानसी.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
4: Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
5: Fasten your seat belts. Kyunki डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Danu Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG. Coming soon on Big 106.2.
6: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Alright, slow moving traffic at the moment. If you're on Satwa on the Jumeirah Road plus Jafalia, at the moment is bumper to bumper kind of standstill hai. Sheikh Zayed filhal a 45 minute delay. Sheikh Mohammed bin Zayed 1 ghanta 2 minute. Aaj bahut traffic hai. Also there is slow moving traffic if you are on the Hesse Street heading towards JVC, Sport City, all the way towards Motor City. Not really bad, but a 27 to 30 minute delay. Patchy traffic though, if you run Springs and going further, anything else you'd like to report, mujhe bataiye 800-1062 par.
6: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
8: Share market itna gehra kuwa hai jo pure desh ki paise ki pyaas bujha sakta hai. Aur main is kuwa mein dubki lagana chahta hu. बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे।
0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सडनली पीक जवानी याद आ जाती है। जवान अभी भी हैं हम, बट अगर आपके ऑफिस में भी जेंजीज काम करते हैं ना, तो वो हमारा जमाना, आपका जमाना तो याद आता है कि हमारा जमाना तो ये था।
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: फिलहाल तो फिर आओ के साथ साथ फिर से आ गया है द बिग चेक इन। दिस इज योर चांस टू फ्लाई विद टीम बिग। लाइक एवरी सिंगल ईयर वी हैव टेकन यू टू सम अमेजिंग डेस्टिनेशंस, बट ये वाली डेस्टिनेशन इज जस्ट लाइक इमरान हाशमी। वो कहते हैं ना, सारा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। तो सो फार ऑल द डेस्टिनेशंस एक तरफ, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक एपिक ट्रिप। योर ड्रीम हॉलीडे इज कमिंग वेरी वेरी सून विद द बिग चेक इन। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स डैन्यू प्रॉपर्टीज, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, Associate sponsor Ford and Sharaf DG, right here on Big 106.2. छोटा सा हिंट देती हूँ, अगर मैं कहूँ fresh pretzels, rich chocolate cake, world famous luxury cars and high speed highways. अगर आपको कुछ समझ आ रहा है, you've got the hint. Let us know where are we taking you this year. You can also get in touch with us on our WhatsApp 0543091062 या फिर Instagram पे एक reel डालिए, उसमें comment करके बताओ 106.2 Big FM, that's our Insta handle.
1: Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, यह है बिग थ्रिल मानसी। एक दिन और फिर वीकेंड आ जाएगा। फिलहाल घर जाते जाते हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं, गाने गाते हैं विद द कैरियोकी। एंड अंकित आ चुके हैं, जिन्होंने पर्सनली ऑफेंस ले लिया है कि कैसे लोगों ने इस गाने को नहीं पहचाना। राइट
2: जी, जी।
1: तो ये जितने लोगों ने गलती की है, गुस्ताखी की है, आप उन्हें माफ कर पाएंगे, क्योंकि इतना आसान गाना था ये।
2: हाँ जी, ये तो बहुत आसान ही गाना जी, वो तो चुनिंदा गानों में से एक है।
1: आप किशोर कुमार के फैन है तो मतलब आप भी गाते होंगे।
2: हाँ जी, गाते ही हैं।
1: सुर लगाते हैं कि बस गा लेते हैं?
2: बस गा लेते हैं।
1: चलो जी, अब किशोर कुमार के फैन हैं तो इनकी आवाज में सुनते हैं।
0: कारियोकी।
1: हाँ जी अंकित, ये रहा आपका ट्रैक।

0: मस्तानी दोस्त किए जाए कोई खींचे तेरी ओ लिया जाए मस्तानी जो।
1: समझ गए मैं सर कि आप सिर्फ गाने के लिए गाते हो क्योंकि ये डोर तो सुर की कट चुकी है यहाँ से।
0: जी जी
1: बाहर निकल गया मतलब नहीं नहीं बेइज्जती क्या होती है इसमें। गाना गाने वालों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: दिल से गाते हो आप।
0: हाँ
1: दिल बिल बसता है बिल्कुल, बट कानों तक नहीं बस पाया। बहुत मजा आया लेकिन यार अंकित आपसे बात करके। करते क्या आप?
0: जी हम जॉब करते हैं आईटी फील्ड में।
1: वेरी वेरी नाइस। क्या प्लान वीकेंड आई है?
0: हाँ जी,
1: कोई
0: हाँ जी,
1: है किसी के साथ जाते हो शाम को लॉन्ग ड्राइव पे जिससे शाम मस्तानी हो जाती है?
0: अभी तो शाम मस्तानी ऑफिस से आते आते ही हो जाती है,
1: बट मैं पूछ रही हूँ किसी का हाथ पकड़ के लॉन्ग ड्राइव पे ऐसे गाने आप गाते हैं?
0: अभी तो इधर बस बिंदास। अभी
1: सिंगल हो आप?
0: बैचलर रह रहे। जी
1: मजा आ रहा है। मतलब मम्मी पापा ही ढूंढेंगे आपके लिए, है ना?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: बहुत ही सुंदर सुशील और सीधे हैं अंकित, ऐसे ही रहिएगा। हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय अंकित।
0: बाय। कोई किशोर जी का सॉन्ग बजा दीजिए।
1: आपने इतना अच्छा गाया कि अभी चार दिन तक नहीं बजा पाऊंगी मैं।
0: नहीं नहीं नहीं, मैं
1: मस्ती कर रही हूँ। चलो बाय
0: बाय बाय।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हाँ जी द टाइम राइट नाउ 6:07।
1: Bollywood.

0: 2. The Beat of Bollywood.
1: 1 + 1 = 2. Free!
2: That's not right.
1: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
2: Really? And these 4 designs to choose from?
1: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
2: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: Homes R Us big deals are here. Save up to 90% off on furniture and home accessories. Best deals, biggest discounts. Hurry, only while stocks last. Exclusively at Homes R Us, Zabil Furniture Mall, Ood Mehta.
5: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
6: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29 अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM। शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 dirhams, इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग। अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
7: बिग 106.2 सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.in।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. This is the Big Thrill in Mansi. We are also playing the 5 second rule. Filhal, I have Zameer with me. Hi, Zameer. Good evening.
3: Hi, ma'am. How are you?
2: I am good. How are you?
3: Good evening. Very good evening. Good. Alhamdulillah. Just missing my wife.
2: Missing your wife?
3: Yes.
2: Kahan gayi
3: ho? Too much.
2: Arey.
3: India.
2: Mohabbat ho to aisi. Too much. ये आप सिर्फ सुनाने के लिए बोल रहे हैं कि सच्ची में याद आ रही है?
3: अरे सच्ची में आ रही है, एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से कटता है।
2: ओए होए, कितने महीने हुए आपकी शादी को?
3: शादी को तो 5 साल हो गए।
2: 5 साल बाद भी आपको उनकी हर लम्हा याद आ रही है? ओफ, फिर तो यार
3: बिल्कुल,
2: ये तो अलग ही आशिक की अलग ही मोहब्बत है। लव मैरिज थी?
3: नहीं, अरेंज थी, खैर बाद में लव हो गई।
2: अरे वाह, मतलब अच्छी बात है यार। 5 साल तक आपका लव ऐसा है कि आप रह नहीं पा रहे हो, तो भेजा क्यों, इंडिया नहीं भेजते?
3: बस यहाँ पर आपको पता है ना, जॉब इतनी है नहीं कि अफोर्ड कर सकूं।
2: अच्छा, आपने
3: सीधी बात,
2: लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है आपकी? हाय, दैट्स रियली सैड। बट आई रियली प्रे आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो ऐसा कुछ कमाल हो जाए कि वो भी आ जाए आपके साथ।
3: यस, आई एम ट्राइंग टू टू।
2: हो जाएगा।
3: न्यू जॉब फॉर दैट,
2: इंशाल्लाह हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तो कितने फोन लगाते हो दिन में, कितनी बार वीडियो कॉल करते हो? मेरे बाबू ने खाना खाया,
3: मैं करता ही रहता हूं। वो नहीं, ऐसा तो नहीं करता।
2: वो उठाती नहीं, उठाती
3: नहीं, वो उठाती है लेकिन उसकी वो मुझे कभी कभी इरिटेट हो जाती है। क्योंकि मैं हर टाइम कॉल ही करता रहता हूँ उसको।
2: घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो रहा है जमीर, 2-3 दिन कॉल मत करो, अपने आप परेशान
3: होगी। मेरे साथ यही हो रहा है।
2: नहीं, अपने आप परेशान हो जाएगी। मैं लड़की हूँ ना, मैं बता रही हूँ, थोड़ा 2-3 दिन कॉल मत करो। जब वो कॉल करे तो भी बोलो मैं बिजी हूँ, अपने आप जो है बोलेगी।
3: मैंने ये ट्राई किया था, ऑनेस्टली बताऊं आपको, लेकिन मैं 1 दिन से या 1.5 दिन से ज्यादा नहीं करता। नहीं, वो करती है, आज कॉल नहीं आई, लेकिन वो इतना नहीं करती जितना मैं करता हूं।
2: मैं कह रही हूं 5 दिन करो,
3: नहीं रह पाता।
2: 5 दिन करो, थोड़ा विल पावर भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है? पिछले देखो टाइम, अपना पास करो। कभी कभार थोड़ी सी एब्सेंस बहुत जरूरी होती है जिंदगी में, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। फिलहाल जमीर विल प्ले द 5 सेकंड रूल। इट्स अ फन गेम, यू गेट 5 सेकंड्स। आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। तीन ऐसे गाने जिनमें आशिकी आता है। अब आप इतनी आशिकी में हैं तो
3: आशिकी टाइम तो नहीं आता कुछ भी।
2: तीन
3: टाइम तो कुछ भी याद नहीं आता।
2: तीन रानी मुखर्जी की मूवीज,
3: कुछ कुछ होता है
2: और
3: दिल मर्दानी।
2: हाँ, और टाइम खत्म हो गया। और फटाफट 5 सेकंड। 3 things that you put in your chai.
3: Only sugar and chai, मैं कुछ नहीं पीता।
2: अरे
3: only
2: sugar. दूध भी तो डलता है, चाय पत्ती भी तो डलती है, चाय बनेगी कैसे पानी दूध?
3: मैं कभी नहीं जीत पाता इसमें।
2: कोई बात नहीं,
3: मेरा थर्ड टाइम है, मैं आपको कॉल करने।
2: जिंदगी में जीत रहे हो यार, जो मतलब 5 साल बाद भी बीवी से ऐसे मोहब्बत करे जो बॉयफ्रेंड्स पहले हफ्ते में करते हैं, वो जिंदगी में जीत गया है। देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा ही बड़ा खराब खेलते हो, बट ये मेरी ट्रिक ट्राई करना। 5 दिन फोन मत करो, अब 5 दिन बाद मुझे फोन करके बताना। दिन में 10 बार फोन आएगा वहां से।
3: ओके, 5 दिन बाद मैं 100% कर
2: दूंगा। देखो, अगर ऐसा हुआ कि फोन नहीं किया और लड़ाई ज्यादा बढ़ गई तो मैं सिर्फ सजेशन दे रही हूँ, पता चले।
3: लड़ाई तो नहीं होती, खैर
2: बढ़ जाए लड़ाई और उसने ब्लॉक वॉक कर दिया तो मेरे पास मत आना। मैं हमेशा अपने दोस्तों को बहुत खराब एडवाइस देती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं सिंगल हूँ, मैं चाहती हूँ वो भी सब सिंगल रहे। आप अपने रिस्क पे एडवाइस यूज करना, ठीक है?
3: आप तो विकी कौशल की दीवानी है।
2: आपको कैसे पता?
3: आपका शो रोज सुनता हूँ।
2: हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। देखो, पर वो भी किसी और का दीवाना है तो कोई फायदा नहीं है।
3: जो हाथ ना लगे उसके पीछे भागना नहीं चाहिए।
2: वो कहते हैं ना, हमने दिल लगाया वहीं जहाँ दिल लगाना मना था हमेशा से। चलो, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू सो मच जमीर।
3: Nice to talk to you. Thank you so much.
2: Yeah, 5 second rule. अगर आपने खेलना है, एक ही rule है, फोन उठाना है, कॉल करना है 800-1062 पर।

0: Great news, Ajman! A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop. Schools starting soon and we need a car.
1: Books, uniforms, everything.
0: Don't worry, I found the best back to school offer on Self Drive. Self Drive cars from just 1099 dirhams per month, flat rate.
2: And what if we need it for a short while?
0: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self Drive from 1099 dirhams per month, flat rate. Self Drive, get ready, get driving.
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
5: Insuremarket.ae. What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. Insuremarket.ae.
6: Recalculating route to Sharaf DG for back to school shopping.
7: Parents, you heard that right. Win up to 5,000 dirhams back on laptops and tablets. Get gifts worth 500 dirhams and enjoy an extra 5% student and teacher discount. And that's not all. Save up to 200 dirhams with DIB and Al Hilal Bank. Power up for AI amplified learning. Shop in store or online. TNC Supply.
0: Missed your morning buzz? Yes or no?
8: I get to get a feel, a flavor of what the corporates are feeling like, looking like, you know, in the UAE. And Anuj khuspusa ke baat karne wale hain. Maine kaha Anuj theek se koi pantry wantry mein ja ke baat karo, to kehte nahi yaar kuch pange ho gaye. Anuj kya panga ho gaya yaar?
9: अरे पंखा के 9 बजे का टाइम है, पार्क करके 2-3 मिनट ऊपर आने में लग गए, तो सुपर बॉस ने कुछ कमेंट किसी को मारा तो पता नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ रूम मेरे लिए था कि किसी और के लिए था।
8: अरे यार जितने भी लोग सुन रहे हैं ना इस वक्त, दे रिलेट विद यू प्रो मैक्स, आई एम टेलिंग यू। एक कमेंट पास किया बॉस नाम के प्राणी ने, अब वो किसके ऊपर लागू है, हु इज द वन पर्सन दैट इट वाज इंटेंडेड फॉर, ये सस्पेंस चलने वाला है। यूजुअली पता चल जाता है या योर बॉस इज मोर ऑफ अ यू नो छुपा रुस्तम काइंड ऑफ अ कैरेक्टर?
9: नहीं, उसने जोर से ही बोला किसी कलीग को, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट, एक्चुअली न्यू जॉब है इसके लिए।
8: अच्छा, न्यू जॉब है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप दैट जॉब अनुज, कांग्रेचुलेशंस। बिलेटेड ही सही, जॉब लगती है तो खुशी तो होती है चाहे कैसी भी जॉब हो। बट अनुज, लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत कुछ क्लूज दिए थे अबाउट दिस गाय जिसकी एक्टिंग की तारीफ नसीरुद्दीन शाह भी करते हैं। ही वॉज इन दिस फिल्म कॉल्ड हाईवे एंड देन ही वॉज अ 35,000 रुपीज पर मंथ का 4 साल का मंथली पैकेज। किसका बर्थडे, हु सेलिब्रेट्स हिज 50th बर्थडे टुडे?
9: रणदीप हुड्डा।
8: एब्सोल्युटली रणदीप हुड्डा इज द करेक्ट आंसर।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
12: 36 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 33। बहुत ह्यूमिड है आज, मुझे गर्मी से डर नहीं लगता है, मुझे ह्यूमिडिटी से लगता है, 67% पर फिलहाल।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
13: Prem bhai, Prem bhai.
14: Are gira kaun?
13: Prem bhai.
15: Abe hata sawan ki kida ghata kha khuja patti khuja intakle le kha khuja patti khuja intakle le kulla hua ke pachim ko palat le bahut ho gaya pichle
13: Big
0: 106.2, the beat of Bollywood.

अब देख लो जेंजीज कुछ भी बोले बट लव एडवाइस उन्हें मिलेनियल से लेनी चाहिए। जो हमारी अवनी है वो अभी जा रही है बैडमिंटन खेलने। अब एक बंदा जो ऐसे बैडमिंटन डेट पे ले जा रहा है वो कह रही है डेट नहीं है। मैं कह रही हूँ ये 100% डेट है, वरना एक जवान लड़का एक जवान लड़की को वीकडे पे बैडमिंटन क्यों खिलाएगा। Coming up in just a bit, while you're at it, something very very exciting happening. हम आपको बैडमिंटन नहीं सीधा कहीं ले जाने वाले हैं। We're talking about the big check-in, all the details coming up. इसी के साथ we've got Shashwat Sachdev right here on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, yeah, Big Thrill of Mansi. And of course, there's a solid backlash this guy is getting on social media, jisne apne aapko etiquette and manners coach bataya hai, and he's suggesting people to have the crispy dosa with the फोक एंड नाइफ. मतलब मजा कैसे आएगा जब तक वो डोसा का एक बाइट बनाकर चटनी पोड़ी सांबर ओहो द सांबर ड्रिपिंग. दिस इज हाउ यू ईट अ डोसा, राइट? सो अ लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग हिम अ लॉट ऑफ बैकलैश, एंड राइट है ये बैकलैश, क्योंकि मैं बिल्कुल अप्रूव नहीं करती हूँ कि कोई भी बिरयानी या डोसा जो है वो फोक एंड नाइफ से खाए. वेल, देयर इज अ पोल अप ऑन इंस्टाग्राम पेज, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो आप किसकी साइड पे हैं. फिलहाल आज एक कमाल मूवी रिलीज हुई थी 2004 में. मैंने रिसेंटली ये मूवी रीवॉच करी है. मोर ऑन दिस मूवी, लेट मी सी कितनों को याद है इन जस्ट अ बिट.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 7:06।
1: Bollywood.

0: फ्रेंड्स अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। फास्टन योर सीट बेल्ट्स क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फ्रॉम हाई स्पीड चेजेस डाउन द ऑटोबान टू ड्रामेटिक डॉन 2 स्टाइल व्यूज, वी टेकिंग यू स्ट्रेट इनटू अ ब्लॉकबस्टर एडवेंचर। वी आर कीपिंग इट अ टॉप सीक्रेट, सो स्टार्ट गेसिंग। गेट रेडी टू पैक योर बैग्स बिकॉज द बिग चेक इन इज कमिंग योर वे। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यू प्रॉपर्टीज, कमिंग सून ऑन बिग 106.2।
2: School's starting soon and we need a car.
3: Books, uniforms, everything.
2: Don't worry, I found the best back to school offer on self-drive. Self-drive cars from just 1099 dirhams per month flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with self-drive from 1099 dirhams per month flat rate. Self-drive, get ready, get driving.
1: Early in the morning, the big breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Dabur Pudin Hara.
5: Don't miss out with Big Ticket.
6: 15 million dirham grand prize.
5: Win up to 1 million dirhams with Big Spin.
6: Plus 5 consolation prizes.
5: Buy now at bigticket.ae.
7: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
10: 36 degrees, low jayega around 33. Very humid today. Filhal humidity 68% par.
1: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2.

0: 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: Schools starting soon and we need a car.
5: Books, uniforms, everything.
4: Don't worry, I found the best back to school offer on self-drive. Self-drive cars from just 1099 dirhams per month flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
4: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with self-drive from 1099 dirhams per month flat rate. Self-drive, get ready, get driving.
6: Insurancemarket.ae. Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
7: Hey, jaldi hata tera khatana.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: सॉलिड ट्रैफिक स्टिल अगर आप शेख जायद पे हैं, 45 मिनट डिले अभी भी दिखा रहा है। दिस हैवी ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद मोटिव टू मुहिसना फेस्टिवल सिटी, इट्स ऑल पैक्ड। ऑल्सो स्लो मूविंग अगर आप जद्दाद के आसपास हैं, हैवी ट्रैफिक नियर नादल हमर दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट। ऑल्सो पैची नॉट रियली स्लो मूविंग इफ यू आर ऑन द हेस स्ट्रीट, 10 से 12 मिनट का डिले इफ यू गोइंग टुवर्ड्स स्पोर्ट सिटी। इनफैक्ट स्लो मूविंग ट्रैफिक इस वक्त आपको फुरजान के पास मिलेगा। एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बता सकते हैं 800-1062 पर।
0: गेट रेडी फॉर स्कूल विद सेल्फ ड्राइव, रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 dirhams अ मंथ फ्लैट रेट विद जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स। बिग 106.2। बिग

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

in touch with us on our WhatsApp, which is 0543091062. फिलहाल आज ही के दिन on the 20th of August release हुई थी 2004 में कमाल मूवी, जो थिएटर में कुछ कमाल नहीं कर पाई, but I have to say it is one of my favorites. I keep revisiting this movie because बहुत ही कमाल कहानी थी. It's a thriller and it was fantastic. I'm talking about Ken Ghosh की movie जिसमें शाहिद कपूर थे, करीना कपूर and फरदीन खान. ब्रिलियंट म्यूजिक. इनफैक्ट इस गाने की शूटिंग तो दुबई में हुई थी. लेकिन एक्चुअली सी बुर्जल अरब इस गाने में. विक्रम सिंह, नेहा वर्मा, जय मल्होत्रा एंड सोनिया मुखर्जी. इट इज अ थ्रिलर विच इन्वॉल्व्स बैंक रॉबरी. अगर आपको याद आ गया है द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, अनु मलिक का म्यूजिक, मुझे बताइए 800-1062 पर.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, ये है बिग थ्रिल मानसी, एंड असली थ्रिल तो एसयूवी में, ओए हाय, एसयूवी में ही आती है. एंड यू कैन आल्सो ड्राइव होम योर ड्रीम एसयूवी दिस समर विद जेटॉस अनबीटेबल ऑफर्स. वैट ऑन देम और 0% इंटरेस्ट. दे गॉट फ्री सर्विस पैकेज इंक्लूडेड, 1 मिलियन किलोमीटर वारंटी, ईएमआई स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 966 दिरहम्स पर मंथ. आज ही विजिट कीजिए जेटॉर शोरूम्स अक्रॉस अबू धाबी, दुबई, अजमान और अलेन. जेटॉर यूएई, पार्ट ऑफ द एलीट ग्रुप होल्डिंग. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: There's a poll up on our Instagram page कि क्या डोसा फोक एंड नाइफ से खाना घोर पाप है कि नहीं, and I'm so glad that people are supporting me. And of course, a lot of people जिन्होंने backlash किया इस वीडियो को, जहाँ पे एक etiquette coach कह रहे हैं कि डोसा खाने का सही तरीका छुरे काटी से है, but जहाँ सारी दुनिया जो है वो इंडियन चीज़ों को, देसी चीज़ों को अपना रही है, थालियों को लोग क्रोम प्लेट्स बोल रहे हैं, टर्मरिक लाटे हल्दी दूध को, वहाँ हम हैं जो बस फोक एंड नाइफ से डोसा खाने को तैयार हैं. सो आपने अगर अभी तक वोट नहीं कराया, गो एंड वोट 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल. आल्सो वी टॉकिंग अबाउट दिस मूवी जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी ऑन द 20th ऑफ ऑगस्ट. अगेन अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थ्रिलर. करीना कपूर, शाहिद कपूर एंड फरदीन खान, अनु मलिक का माइंड ब्लोइंग म्यूजिक. अगर आपको याद आ गया है, 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 36 डिग्री है, लो जाएगा अराउंड 33, काफी ह्यूमिडिटी, मुझे बहुत परेशान करती है ह्यूमिडिटी। अगर आप भी मेरी तरह चश्मा लगाते हैं तो देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई गो थ्रू। 68% पर है अभी और बढ़ेगी ह्यूमिडिटी।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, yeh hai Big Thrill Mansi and we were talking about this movie jo aaj hi ke din 2004 mein release hui thi and I love this movie. Matlab main ise kuch mahino baad rewatch karti hu because mujhe badi kamaal lagti hai ye movie. Right now bahut thak gaye hain Sameer. Bas ek din baki hai to ek hi din hai fir to weekend aa gaya.
3: Nahi mera to Friday ke din hi chutti hota
2: hai. Aapka kal chutti hai?
3: Haan kal chutti hai.
2: To fir itna udaas hone ki kya baat hai? Aapki to chutti hai, kal khush ho jao yaar.
3: Nahi chutti hai but extra work bhi rehta hai na
2: main. Ghar ka?
3: नहीं नहीं ऑफिस का ही वर्क होता है.
2: अच्छा छुट्टी के दिन भी काम करते हो? ऐसी क्या जिंदगी जीनी है यार समीर, क्या करोगे इतना पैसा कमा के? क्या करोगे? कस्टमर के कॉल आते रहते, करते क्या हो आप?
3: मैं फैब्रिक सप्लायर हूँ.
2: ओ वेरी नाइस यार, एक दिन तो अपने लिए बंदा निकाल ही सकता है. फिलहाल हम जाते हैं 2004 में. आई गेव यू फ्यू हिंट्स एंड आई लव दिस मूवी. फरदीन खान, शाहिद कपूर, करीना कपूर, किम शर्मा. कौन सी मूवी थी?
3: फिदा.
2: एब्सोल्युटली करेक्ट, फिदा इट इज. एंड मूवी दुबई में शूट हुई थी. सेकंड हाफ जब फरदीन एंड करीना का वो पार्ट ऑफ द मूवी आता है, इट वाज शॉट हियर.
3: जी जी जी मैम, पता है.
2: आपको अच्छी लगी ये मूवी?
3: बहुत अच्छी लगी.
2: क्यों, ऐसी कोई लड़की थी नेहा जैसी जिसने आपको धोखा दिया पैसे के लिए? अच्छा, बड़ी अच्छी लगी थी यार करीना कपूर. फरदीन भी बहुत अच्छे लगे थे इस मूवी में. तो आप लोगे क्या बदला बदला अगर प्यार में कोई लड़की धोखा दे जाती है तो?
3: नहीं मैम, जिसे प्यार किया उसे शादी हुआ है, दो बच्चा है अभी भी.
2: बहुत याद तो मतलब एकदम दाल चावल वाली सादी सादी सुखी जिंदगी. दाल चावल में ही सुख है मैं कह रही हूँ. ये जितना टंगड़ी कबाब और बिरयानी वाले है ना, उनका पेट खराब होता है. दाल चावल इज बेस्ट, दाल चावल इज बेस्ट, आई एम टेलिंग यू समीर.
3: Yes,
2: फिदा की बात निकल ही चुकी है तो आप तो ऑलरेडी किसी पे फिदा हैं. हम फिदा का ही गाना सुन लेते हैं आज. लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग एंड द नेक्स्ट टाइम यू गो टू द जुमेरा बीच आई थिंक आपको इस गाने की याद आएगी. बुर्जल अरब वहीं पे है ना?
3: जी जी मैम.
2: हाँ मैंने थोड़ा कंफर्म कर लूँ मैम, पता चले गलत इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने. चलो समीर, एंजॉय योर इवनिंग, एंजॉय योर छुट्टी, बाय.
3: थैंक यू, बाय बाय.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह है बिग थ्रिल मानसी एंड ऑफ कोर्स

0: ਸ਼ਾਮ ਯਾ ਰਾਜੋ ਸ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੇ ਬਾਬਾ ਆਪਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬੂ ਰਾਓ ਗਣਪਤ ਰਾਓ ਆਪਤੇ ਬੋਲ
1: 106.2 ਦ ਬੀਟ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਾਸਨ ਯੂਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟਸ ਕਿਉਂਕਿ डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है फ्रॉम हाई स्पीड चेजेस डाउन द ऑटोबान टू ड्रामेटिक डॉन 2 स्टाइल व्यूज वी आर टेकिंग यू स्ट्रेट इनटू अ ब्लॉकबस्टर एडवेंचर वी आर कीपिंग इट अ टॉप सीक्रेट सो स्टार्ट गेसिंग गेट रेडी टू पैक योर बैग्स बिकॉज द बिग चेक इन इज कमिंग योर वे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यू प्रॉपर्टीज टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Coming soon on Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश डाबर पुदीन हरा योर पॉकेट साइज कंपेनियन इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन
3: सरदार खान नाम है हमारा बता दीजिएगा सबको
4: गोली नहीं मारेंगे साले को कह के लेंगे उसकी
1: 106.2 The Beat of Bollywood Big 106.2 That's my song

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स मिस किया गया
1: कर ही नहीं सकते चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
2: हाय डिंपल, कैसे हो आप?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
2: मैं भी ठीक हूँ। डू यू हैव अ पार्टनर?
3: वेट, आई हैव अ पार्टनर इन क्राइम, सो वी हैव अ कपल ऑफ इडियट्स। डज दैट काउंट?
2: बताइए वन थिंग यू लव अबाउट कपल्स एंड वन थिंग यू हेट अबाउट देम।
3: आई एम अ ट्रू रोमांटिक एट हार्ट, सो फॉर मी कपल्स लाइक आई लुक एट देम लाइक
2: So you just go, oh, okay, यार ये क्या हो गया? Such a cute moment. अच्छा वन, कोई ऐसा cute moment बताओ।
3: There is this one elderly couple मेरी building के नीचे, वो लोग हर रोज सुबह walk के लिए जाते हैं। And I think that is so cute. They're always holding hands. I don't have a partner.
2: Oh, अच्छा ये आप मेरी category में हो।
3: Exactly. मैं I'm with my goddaughter Nishka.
4: Hi.
2: Hi. Hello.
3: We are the couple of idiots I was talking about. हम लोग अभी long drive पे जा रहे हैं।
2: स्वीट बट आई लव योर एनर्जी। आप मैनिफेस्ट करो ऐसे क्यूट मूवमेंट्स। आई थिंक सो यही करना चाहिए मुझे भी यार, तभी कुछ हो पाएगा लव लाइफ का। नहीं,
0: चेयर योर मिड डे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM द बिग मिक्स विद अवनी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: 2 या 4? 4। कब तक वापस लौटेगा?
1: यही 4-5 दिन में।
2: 4 या 5? 5।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Chill. Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.